अपनी जो खुशियां है ना वो खुद ढूंढनी पड़ती है, वो चलकर आप तक नहीं आती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल सोशल मीडिया पे चल रहे बहुत सारे होते हैं ना पेट फ्रेंडली वीडियोस जो है ना वो हमें इनडायरेक्टली देते हैं। और आज ही मैंने देखा स्क्रॉल करते करते कि अपने आगरा के ताज महल के आगे जो तालाब सा बना हुआ है ना, आप कह सकते हैं या वाटर टैंक ही है वो एक तरीके से, है ना, उसे डिजाइनिंग का पार्ट रखा गया है, उसमें कूद कूद के बंदर नहा रहे हैं। और ये जो उनका जॉयफुल मोमेंट है ये सोशल मीडिया पे कैप्चर करके डाल दिया गया है। तो मतलब ठीक है, अपना ही जो खुशियां है ना वो खुद ही ढूंढो और आसपास लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये तो सोचना भूल ही जाओ। ना ना ना, इससे तो काम चलना ही नहीं है। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है और सोचने वाली बात ये है कि सिंगापुर में जो एक नया गेम शो आ चुका है वो क्या है। हां जी, मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आए हैं द लायन सिटी चैलेंज। अगर आप अपने आसपास सिंगापुर में क्या चल रहा है, जनरल नॉलेज में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, हर कैटेगरी में क्या कुछ चल रहा है, इन सारी बातों में लेते हैं दिलचस्पी, तो आपके नॉलेज का होने वाला है टेस्ट और विनर्स को तो बहुत कुछ मिलने वाला है। पार्टिसिपेट कीजिए, सिर्फ मेरी बातें मत सुनिए, टाइप कीजिए लायन LION और टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर हमें भेज दीजिए 9151896 पे। फिर आगे के स्टेप्स क्या होंगे हम आपको रिवर्ट बैक करके बता देंगे। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो, सिंगापुर स्मार्टेस्ट माइंड कुड बी यू। मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे नुपुर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: ये जो आपका गला है, आपके हाथ है, आपकी जो उंगलियां हैं, ये थोड़ी सूनी लग रही है मुझे, या फिर काफी रिपिटेटिव ऑर्नामेंट्स आप कैरी कर रही हैं या कैरी कर रहे हैं। आ आ आ आ आ, आ एक मिनट, तो मौका आ चुका है ज्वेलरी खरीदने का। हाँ जी, सुरानगुन रोड पर पहुंच गई है जॉया लुकास, जहां पे चल रही है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल। फ्लैट 40% ऑफ ऑन योर मेकिंग चार्जेस, गोल्ड डायमंड पोल की प्रेशियस ज्वेलरी जबरदस्त सेविंग्स के साथ आप परचेज कर सकते हैं। साथ में इजी पेमेंट प्लान है, डायमंड एक्सचेंज पर भी 100% वैल्यू आपको ऑफर करी जा रही है। ये ऑफर 14th of June तक ही है, तो थोड़ा क्विकली स्टेप लेना पड़ेगा। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: सुन टकाटक, ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: हर एक ओरिजिनल चीज का एक बहुत ही चीप वर्जन होता है, एंड जब हमें वो वर्जन पता चलता है तो हमें लगता है ओ माय गॉड, हमारे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया। ऐसे DIYs एग्जिस्ट करते हैं। सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि आपने इंडिया में नवरात्रि के दौरान घरों में वो स्टील वाली प्लेट देखी है जिसमें बहुत सारे खाचे होते हैं, छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे आप कह सकते हैं कटोरियों का वो काम करते हैं, एंड वो जो खाचे हैं ना उसमें आप मल्टीपल सर्विंग्स ले सकते हैं, तो स्पेस कम हो तो भी आप बहुत कुछ एक साथ खा सकते हैं। वो स्टील प्लेट्स आज भी हमें नॉस्टैल्जिक फील कराती है। सो कनाडा में एक इन्फ्लुएंसर है, उसने पता क्या किया, वही प्लेट सुपरमार्केट से परचेज करी, स्टील की, अलग अलग खांचों वाली है ना, तो वो खांचों में उसने बहुत सारी अलग अलग तरह की जो ज्वेलरीज होती है ना उन्हें रखा और उसे एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर की तरह क्रिएट कर दिया। ओ माय गॉड, अब वो हाथ के बैंगल्स हो, रिंग्स हो, क्लॉक क्लिप्स हो, मतलब एवरीथिंग उसने ना उन चीजों में सटा के रख दिया, और ये थॉट तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था यार। तो आप भी ट्राई कीजिए और सोचिए क्या सच में ही वर्थ इट है। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 40% ऑफ, 40% जॉय आलुकास,
3: 40% ऑफ, ओ माय गॉड, लेट्स गो लेट्स गो।
4: ऑफर ऐसा कि आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। सुन सुन बाबा, सुन सुन बाबा, सुन सुन सुन। जॉय आलुकास लाया है द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल, फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड, पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज। Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: देखो ये चीज तो है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। एंड इस चीज को भली भांति समझती है कौन, कंगना रनौत। मौके पे चौका, आए हाय, सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस ही मारते हैं। और कंगना रनौत तो पॉलिटिशियन भी है, एक्टर भी है, क्या कुछ नहीं है यार। सो हेलो हाय, मैं आज इनपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड अब कंगना रनौत ने क्या कर लिया है भाई, आप उन्हें ऐसे नेगेटिव निगाहों से मत देखा करिए। कंगना जो है वो अच्छे अच्छे लोगों का साथ देती हैं। हाँ जी, रिसेंटली उन्होंने रणवीर सिंह को अपना समर्थन दे दिया है। जिस तरीके से रणवीर एंड फरहान अख्तर के बीच में कॉम्प्लिकेशंस आए डॉन 3 मूवी अचानक से एग्जिस्ट करने में, तो उन्हें फिल्म ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रोवर्सी निकल कर आई। तो कंगना रनौत ने अब कह दिया है कि जब आप फेमस होते हैं ना तो आपके दुश्मन बहुत बन जाते हैं। तो देखो, मेरे भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा दुश्मन बने और आज मैं आपके सामने छोटी मोटी ही सही आपके सामने बैठी हूँ। और मुझे लगता है रणवीर सिंह के साथ भी यही हो रहा है, उन्हें भी बॉयकॉट करके ये फील करवाया जा रहा है कि आप कितने छोटे इंसान हैं। लेकिन इन रियलिटी डोंट चैलेंज। क्या बात है भाई, कंगना रनौत ऐसी चीजों में मौके का फायदा ना उठाए तो क्या ही फायदा। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

भाई आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है हिस्ट्री से लेके ईच एंड एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं इन एंड आउट. सो व्हाई नॉट आप एक्सेप्ट कीजिए मस्ती मीडिया नेटवर्क का द लायन सिटी चैलेंज शो. हां जी, एक ऐसा शो जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी नॉलेज का होगा इम्तिहान. बल्कि आस पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लाइफ स्टाइल, हर चीज जो सिंगापुर में भी बल्कि चल रही होती है, आप हर चीज पे नजर रखते हैं. तो भाई सिंगापुर का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गेम शो आ चुका है मस्ती मीडिया नेटवर्क पर. हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या क्या क्या, मैं आरजे अनुपुर बताना चाहेगी आ चुकी है कि द लायन सिटी चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. राइट, इन सारी कैटेगरीज में इंटरेस्ट रखने वालों को मिल सकता है आने वाले वक्त में बहुत सारे कैश प्राइजेस एंड गिफ्ट. सो पार्टिसिपेट कीजिए, टाइप कीजिए लायन LION और भेज दीजिए 9151896 3 पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप करके. एंड डेफिनेटली हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आगे के स्टेप्स आपको बताए जाएंगे. अरे आप स्मार्ट है यार, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो. आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर.

0: Singapore, prepared for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: You know what? मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो मेटा है ना मेटा वो कहीं हमारी लाठी ना बन जाए लाठी हाँ जी यानी वो सहारा जिसके बिना चला नहीं जा सकता सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से हर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ता जा रहा है उस तरह से हम कहीं ना कहीं अपनी डिपेंडेंसी उन पर डालते जा रहे हैं सो हेलो हाई मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ एंड अब जो है मेटा इस तरह से हमारा सहारा बन रहा है कि आपके कंटेंट स्टाइल को देखकर आपकी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को और ऑडियंस एंगेजमेंट को देखते हुए आपके लिए वो कंटेंट लिखना भी शुरू कर देगा मतलब जिस तरह से आप चीजें बनाना चाहते हैं उनके आइडियाज वो आपके पैटर्न को समझ के लिखना शुरू कर देगा ओ माय गॉड तो ये एआई असिस्टेंट जो है वो ऑलरेडी मेटा में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और फेसबुक से इसकी शुरुआत हो चुकी है तो जितने लोग आउट ऑफ कंटेंट बजट चले जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है तो लेट्स सी ये कितना काम आता है आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: अगर आप उन लोगों में से हैं जो फूड मेन्यू देखकर कहते हैं यार सब ऑर्डर कर दो, मजा आ जाएगा आज का खाना खाकर, तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप पहुंच सकते हैं शाही महारानी रेस्टोरेंट, जहां अगर आप सब कुछ भी मंगवा लेंगे ना तो भी फायदे में रहेंगे। बिकॉज शाही महारानी सेलिब्रेट कर रहा है 25 years ऑफ रॉयल फ्लेवर्स। हां जी, 25 साल हो चुके हैं रैफल सिटी सेंटर में शाही महारानी को। तो अगर आपने ऐसा कुछ ऑर्डर किया कि आपकी टेबल का बिल $100 पहुंच गया, तो आप बहुत सारी डिशेस $25 में अनलॉक कर सकते हैं, जैसे मुर्गी टिक्का, चिकन मक्खन वाला, पालक पनीर, बहुत सारी चीजें आपको $25 में मिल जाएंगी। तो अब सवाल ये है कि टेबल कौन बुक कराएगा? लॉग ऑन कर लो shahimaharani.com फॉर फर्दर डिटेल्स। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

सुन टकाटक, ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। अच्छा लगता है ये जानकर कि सेलिब्रिटीज रियल एस्टेट को किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, रिसेंटली अक्षय कुमार ने अपने फ्लैट वगैरह बॉम्बे में बेच दिए हैं 7.1 करोड़ के। हाँ, तो अक्षय कुमार इन सब चीजों में बिजी हैं, तो आप भी किसी चीज में बिजी हो जाइए, जैसे कि सिंगापुर में मस्ती मीडिया नेटवर्क यानी

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: लंबरगिनी ते कित्थे लौंदा फिर गेड़िया जरिया नी जांदिया फ्रेंड मैथों तेरिया लंबरगिनी ते कित्थे लौंदा फिर गेड़िया जरिया

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
3: No talking allowed. सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। Back to back गाने only on Musti Music Cafe.
4: Where you Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.
3: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti subah 6 baje se.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
3: 3, 2, 1
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
2: आइए, स्वागत है आप सभी का, है ना। स्माइल देखिए कितनी बड़ी वाली आती है, और मैंने कहा था ना एक वो वक्त आएगा जब आपको हर थर्सडे का इंतजार होगा। देखिए इट इज नॉट अबाउट द टाइम एंड द डे, इट इज अबाउट दिस शो विच मेक्स इट एब्सोल्युटली स्पेशल, क्योंकि आपने भी एकदम टाइमली ट्यून इन कर लिया है टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ अंतरा, यहाँ पर आपके साथ 90s वाली अंतरा, आप प्यार से मुझे बुला सकते हैं, क्योंकि शुरू हो चुका है मस्ती 90s मिक्सटेप। दैट इज राइट, वो शो जहां हम सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, उन गानों के आसपास की जो जिंदगी थी 90s वाले, उसे भी साथ साथ में याद करते हैं। कभी नोटिस किया है 90s में हमारे पास जो है बहुत ही कम लिमिटेड चीजें थी, पर उन कम चीजों से ही कितनी बड़ी दुनिया बना दी जाती थी। एक टेनिस बॉल से पूरा वर्ल्ड कप खेल लेते थे हम, एक कैसेट से पूरा समर वेकेशन निकल जाता था, एक साइकिल से पूरी कॉलोनी जो है वो नप जाती थी, और एक रेडियो से पूरी की पूरी दुनिया हमारी, वो भी इमेजिनेशन वाली। उस वक्त हैप्पीनेस एक्सपेंसिव नहीं होती थी, कभी स्कूल से आते वक्त ऑरेंज आइस कैंडी मिल गई तो लगता था कि भाई आज तो जैकपॉट ही लग गया, कभी फेवरेट गाना रेडियो पे बज गया तो दिन बन जाता था, कभी टीवी पे अनाउंस की हुई मूवी के बीच में लाइट यानी कि बत्ती नहीं गई तो फिर हमें लगता था आज तो मतलब कयामत ही, यू नो सम लकी डे इट इज राइट। और बॉलीवुड क्या ही कहने उसके, 90s बॉलीवुड ने तो हम सबको इतने सपने दिए। किसी को शाहरुख खान वाला रोमांस चाहिए आज की डेट में भी, किसी को माधुरी दीक्षित वाली स्माइल चाहिए, किसी को गोविंदा वाले डांस स्टेप्स चाहिए, और किसी को कुमार सानू की जो है आवाज में प्यार का मतलब चाहिए। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 90s को याद करते वक्त हम गैजेट्स या ब्रांड्स याद नहीं करते हैं, हम फीलिंग्स याद करते हैं, वो घर, वो गली, वो आवाजें, वो लोग, वो इंतजार, वो एक्साइटमेंट। और शायद इसीलिए 90s कभी पुराना नहीं लगता है, क्योंकि वो एक डेकेड नहीं, एक इमोशनल एड्रेस है। तो आज फिर से खोलते हैं यादों का वो मेटल वाला ट्रंक, जिसमें कहीं पुरानी रिपोर्ट कार्ड्स हैं तो कहीं कैसेट्स के कवर, कहीं क्रिकेट के स्कोर शीट्स हैं तो कहीं हम खुद ही वहीं पे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 90s वाला सफर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, 90s वाली यात्रा के साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: आर यू रेडी?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। पता नहीं, देखो देखो कौन होगा, कौन होगा। क्योंकि कॉलर आईडी तो बहुत बाद में आई थी ना। 90s की बात कर रहे हैं हम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। एक रिंग में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती थी। 90s में ये जो आवाज थी वो कुछ ऐसी ही थी जो घर के किसी भी कोने से सुनाई दी जाए। दैट इज राइट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सबका अटेंशन जो है फिलहाल मैं वो फोन पे लाना चाहती हूँ। भाई घर पे भी जब फोन बजता था तो सबका अटेंशन वही जाता था ना कि ट्रिंग ट्रिंग, लैंडलाइन की वो जो रिंग होती थी और उस रिंग के साथ आता था एक छोटा सा सस्पेंस। क्योंकि उस वक्त ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा कॉलर आईडी तो होता नहीं था, नेम स्क्रीन पे फ्लैश नहीं होता था, राइट, प्रोफाइल फोटो तो बहुत ही दूर की बात है। बस फोन बजता था और पूरे घर का गेसिंग गेम स्टार्ट हो जाता था कि शायद मामा जी होंगे, नहीं नहीं नहीं पापा का ऑफिस का कोई फोन होगा, अरे नहीं यार बुआ का फोन आया है, नहीं मासी का फोन आया है। 90s में हर फोन कॉल ना एक सरप्राइज पैकेज के जैसे होता था। जब तक रिसीवर नहीं उठाते तब तक कुछ पता ही नहीं। एंड ऑनेस्टली उस अनसर्टनिटी में भी कितना एक्साइटमेंट होता था ना कि कभी किसी दोस्त का जैसे कॉल आ गया, कभी किसी रिश्तेदार का कॉल आ गया, कभी रॉन्ग नंबर आ गया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, और कभी कभी वो कॉल जिसका पूरा दिन वेट किया जाता था। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज रिंग के पैटर्न से भी लोग प्रिडिक्शन करते थे कि दो रिंग देकर काट दिया तो पक्का। देखो ये सारी चीजें ना हम लोग इतने ज्यादा प्रो हो रखे हैं उस टाइम से कि हमने तो सिग्नल डिसाइड कर लिए थे अपने टाइम में कि दो रिंग का मतलब ये, एक रिंग का मतलब ये। जैसे फोन सिग्नल्स डिकोड करने का सीक्रेट ट्रेनिंग जो हमने लिया हुआ है 90s में। और घर में भी रेस लगती थी, फोन बजते ही सभी उसी की तरफ भागते थे, राइट, कि पहले कौन उठाएगा। उसके जो है उस जो भी उठाएगा तो बेसिकली इंफॉर्मेशन की पावर उसके पास चली आती थी कि फोन मेरे लिए है क्या। आज हम कॉल आने से पहले नाम देखते हैं, ठीक है, डिसाइड करते हैं कि रिसीव करना है कि नहीं करना है, मूड है नहीं है। लेकिन 90s में रिसीवर उठाना ही पड़ता था और हर बार एक नई पॉसिबिलिटी सामने होती थी। शायद इसीलिए 90s के लैंडलाइन कॉल्स इतने याद रहते हैं क्योंकि उनमें कन्वीनियंस कम थी, क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी। और आज भी कहीं ऐसी घंटी सुनाई दे जाए लैंडलाइन की तो दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है कि अरे देखो तो सही कौन होगा। याद आए, बस यही तो काम है मेरा मस्ती 90s मिक्स टेप पर ये सारी बातें करने के साथ साथ बढ़िया बढ़िया 90s वाले गाने प्ले होते रहने चाहिए। बस मूड समा 3 घंटे कुछ ऐसा ही बंधा हुआ रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, सो स्टे ट्यून्ड। आओ वापस आओ।

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: While we are also talking about those memories, 90s के दिनों वाली, भाई 90s के बॉलीवुड का भी बीच बीच में आते जाते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगी, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम बात करते हैं तभी आता है को, ओ, अच्छा ऐसा भी तो हुआ करता था। अब आपको लेकर जाना चाहती हूँ 90s के मूवी के टाइम पर। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी मतलब हीरो का बहुत ही एक एंट्री कराना होता था तो जूता पहले दिखाते थे और शक्ल बाद में जो सस्पेंस जो है क्रिएट किया जाता था, एक क्लासिक फॉर्मूला था उस टाइम का 90s के वक्त का कि हीरो आ गया है पर ऑडियंस को अभी उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, जूते। याद आया ना। सो कैमरा ग्राउंड लेवल पे होता था, स्लो मोशन वॉक, बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक, स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ जूते, एक कदम टक, दो कदम टक टक, तीन कदम टक टक टक, और मतलब थिएटर में सीटियां ही सीटियां, भाई चेहरा भी नहीं दिखाया अभी। और ये सिर्फ स्टाइल नहीं था मेरे दोस्त, फिल्म मेकिंग की टेक्निक थी। 90s डायरेक्टर स्टार की एंट्री को इवेंट बना देते थे, इसीलिए पूरा फेस इमीडिएटली रिवील नहीं किया जाता था, पहले वॉक होगी, फिर बॉडी लैंग्वेज होगा, फिर जूते दिखाए जाएंगे ताकि एंटिसिपेशन बिल्ड हो। और ऑनेस्टली उस वक्त जितने भी हमारे सितारे थे यानी कि स्टार्स थे, उनकी वॉक भी उनकी एक आइडेंटिटी होती थी। सनी देओल की वॉक अलग, शाहरुख खान की वॉक अलग, संजय दत्त की वॉक अलग, अजय देवगन की वॉक अलग। कभी कभी ऑडियंस सिर्फ वॉक देख के ही पहचान देते थे कि अरे ये तो हमारा हीरो है, शाहरुख खान है। और फिर जैसे ही कैमरा ऊपर आता फुल थिएटर का रिएक्शन होता। आज तो ट्रेलर रिलीज होते हैं, कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज होते हैं, सोशल मीडिया पे पहले ही सब कुछ रिवील हो जाता है, लेकिन 90s में हीरो की एंट्री को जेन्युइनली सेलिब्रेट किया जाता था। और उस एंट्री के लिए भी लाइटिंग स्पेशल, डस्ट भी स्पेशल, बैकग्राउंड स्कोर भी स्पेशल, और जूते सबसे स्पेशल। कभी पॉलिश्ड ब्लैक बूट्स, कभी चंकी से स्नीकर्स, कभी काउबॉय स्टाइल के शूज, मतलब फुटवेयर भी जैसे साथ साथ में एक्टिंग कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली 90s बॉलीवुड का कॉन्फिडेंस ही अलग था। आज फिल्म मेकर्स बोलते हैं कि भाई कहानी देखो, 90s वाले बोलते थे पहले एंट्री देखो सर। शायद इसीलिए आज भी जब कोई भी 90s की मूवी लगा के देखो तो मतलब लगता है कि यार ये सारी चीज़ तो हमें पता ही है, ये तो अब तो हमारे हीरो की एंट्री होने वाली है, कितना कनेक्ट करते हैं ना वो मूवी वापस, हमें पता है कि ये कौन है अभी भी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम रियल लाइक यस आ गया, दिस इज द मोमेंट, बिकॉज वी फील दैट थिंग एट वेरी दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन। And isn't it magical? That's the jadu of 90s that we feel the same feeling aaj bhi again and again. Stay tuned.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: 40% off, 40% joy alukas,
3: 40% off, oh my god, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry, and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

नहीं नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन वो चिपकाने के बाद हमको रियलाइज होता था कि टेढ़ा चिपक गया है और अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। क्या बात कर रही हो अंतरा? अंतरा बताएगी आपको, क्योंकि यह है मस्ती 90s मिक्स टेप रेडियो 24/7 लाइव पर। भाई, स्कूल में प्रिपरेशन वॉज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स 90s में। भाई, स्कूल खुलने से पहले वो जो एनुअल इवेंट हुआ करता था, ना ना ना ना, स्पोर्ट्स डे भी नहीं, एनुअल फंक्शन भी नहीं, एग्जाम की तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। बुक्स को कवर करने का वो सीजन है ना। नई टेक्स्ट बुक्स जब घर आती थी कि डाइनिंग टेबल जो है एक टेम्पररी वर्कशॉप के जैसे बन जाता था। ब्राउन पेपर रोल्स, फिर सीजर्स, फिर ग्लू, ट्रांसपेरेंट टेप और एक साइड पे ये बुकों का पहाड़, दुखों का पहाड़ नहीं साउंड किया, लेकिन बुकों का पहाड़, पूरा ऑपरेशन चल रहा होता था, राइट? लेकिन असली चैलेंज ब्राउन पेपर नहीं था, असली चैलेंज था नेम स्लिप को परफेक्टली सीधा लगाना ऑन दैट नोटबुक और बुक विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। और उस व्हाइट नेम लेबल की इंपॉर्टेंस ही बिल्कुल अलग थी, क्योंकि स्कूल का नाम, स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन, सब नीटली लिखना और फिर सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट कि अब इस स्लिप को चिपकाना है। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, बस ऐसे दिल टूटता था ना, या फिर बबल आ जाता है बीच में तो और भी ज्यादा बुरा लगता था। कुछ बच्चे तो स्केल से प्रेस कर करके एयर बबल्स जो है वो निकाल देते थे, जैसे कोई इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो। एंड पूरा साल उस कवर को देखना है, राइट? इसीलिए परफेक्शन जो है ना काफी कंपलसरी था। आजकल नोटबुक्स डायरेक्टली प्रिंटेड कवर्स के साथ ही मिल जाते हैं, तब हर बुक कस्टम मेड लगती थी और कवर लगते ही बुक सडनली ऑफिशियल सी फील आ जाती थी। नहीं, नया सेशन है, नई क्लास, का एक्साइटमेंट होती थी उस टाइम पे, नए टीचर होंगे, कौन बनेंगे आपकी क्लास टीचर एंड ऑल दोस थिंग्स, नई पॉसिबिलिटीज। कैसे हम लोग पहले से डिस्कस करने लगते थे ना कि अच्छा आप उस क्लास से हो, उस सेक्शन से हो, अभी कौन है आपकी क्लास टीचर एंड ऑल दोस थिंग्स। और उस फ्रेश ब्राउन पेपर की स्मेल भी यार, सच्ची में उफ, उसमें ना समर वेकेशन के एंड और स्कूल के स्टार्ट दोनों की फीलिंग हुआ करती थी। इसीलिए 90s के स्कूल के प्रिपरेशंस इतने याद रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, हम पूरे साल के लिए मेंटली रेडी होते थे। एंड ऑनेस्टली आज भी मतलब मुझे कहीं पर ऐसा ब्राउन पेपर, वाइट स्लिप ऐसा कुछ दिख जाता है ना, एनीवे स्टेशनरी शॉप इज माय लाइक ड्रीम लैंड। मैं ऐसा बचपन कूद के बाहर आता है मेरा, आई कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ओवर देयर। बट देन या, नेम स्लिप्स की बात अलग थी, नहीं अलग थी कि नहीं थी? आपने लगाए थे कार्टून वाले या फिर? मेरे तो बहुत टाइम तक नॉर्मल स्टैंडर्ड वाले जो है वही लगते हुए आए थे, कार्टून वाले या फिर थोड़े से फैंसी वाले काफी बाद में। और एक टाइम तो आया, आई थिंक क्लास 10th के बाद तो मतलब इट डजेंट मैटर, आप नेम स्लिप नहीं भी लगाओ तो चलेगा, इट्स लाइक द सीनियर काइंड ऑफ थिंग। 90s में भी यही था। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव, स्टे ट्यून्ड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: फैसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: कोई भी चीज, अभी स्टेशनरी की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, कोई भी नई चीज ना हम बहुत जल्दी यूज नहीं किया करते थे। आई थिंक दिस वाज लाइक काइंड ऑफ एम्बाइब्ड इन अस 90s के वक्त में। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। जैसे हमारी मम्मियां भी जो है कोई भी चीज को नया बहुत देर तक रखने, बहुत दिनों तक वो चले, तो इसलिए प्लास्टिक का कवर ही नहीं हटाती थी कि नहीं नहीं नहीं गंदा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं इसको ऐसे ही लगे रहने दो, और हम उसको प्लास्टिक कवर के साथ ही यूज किया करते थे। तो वो जो मम्मियां क्या करती थी वो हम पे ऐसे ट्रांसफर हुआ कि अगर हम नया इरेजर लेकर आए उसको हम बहुत ही ऐसे यूज करते थे कि नहीं नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं, नया नया मतलब न्यू थिंग्स फेल्ट प्रेशियस। एंड 90s के बच्चों के पास ये एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कुछ चीजें हम खरीदते थे यूज करने के लिए और फिर उसे यूज ही नहीं करते थे कि वो पुराना हो जाएगा। और इस लिस्ट का किंग था एटलीस्ट मेरे लिए इरेजर, नया इरेजर, एकदम क्लीन, बिल्कुल वाइट, एकदम शार्प कॉर्नर्स, और वो एक फ्रेश रबर वाली खुशबू जो है वो भी आती थी। देयर वाज दिस टाइम पीरियड जहां पे फ्लोरोसेंट कलर के ना उसी ब्रांड के इरेजर्स आने शुरू कर गए। मुझे इतने पसंद थे वो, इतने फ्लोरोसेंट, नियॉन पिंक, नियॉन ये ग्रीन, बहुत ही कमाल लगते थे ये नियॉन ऑरेंज, यू नो हाउ मच आई लव ब्राइट कलर्स। सो नया इरेजर देखकर लगता था कि यार ये स्टेशनरी नहीं है यार, आर्ट वर्क है। फिर स्कूल का पहला दिन आता, नोटबुक ओपन, पेंसिल से हमने लिखना स्टार्ट किया, गलती भी हो गई, लेकिन नया इरेजर जो है ना यूज करने में ऐसा जोर आता था, ऐसा जोर, क्यों, अभी तो नया है ना पहले पुराना वाला खत्म करो। और वो पुराना इरेजर ठीक है ऐसा घिसा हुआ, कॉर्नर्स नहीं है, मतलब वो ग्रे हो चुका है, पर फिलहाल ड्यूटी पे वही रहेगा नया इरेजर रिजर्व बेंच पे बैठेगा। कल एक्चुअली ऐसा ही एक इरेजर मेरे फ्रॉम रैंडम चीज़ें जो मैंने ऐसे ही मेरे ये ऑफिस के डेस्क में दिखा, एंड आई वॉज लाइक वाह, मतलब ये भी यूज़ किए मुझे काफ़ी टाइम ही हो गया। सो वेल 90s में न्यू थिंग्स को इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किया जाता था, उसे इन्जॉय किया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था। नई किताबें, नया पेंसिल बॉक्स, नए स्कूल शूज़ और स्पेशली द न्यू इरेजर्स, कभी ट्रांसपेरेंट कवर्स के अंदर, कभी पेंसिल बॉक्स के स्पेशल कंपार्टमेंट में, जैसे उसको एकदम VIP गेस्ट का ट्रीटमेंट मिल रहा हो। आज हम पैकिंग खोलते ही उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब नई चीज मिलना खुद में एक इवेंट हुआ करता था, है ना। छोटी छोटी चीजें इतनी याद रहती है यार, इट्स लाइक लिविंग दोज मोमेंट्स, राइट। दिस शो इज ऑल अबाउट दैट। मस्ती 90s मिक्स टेप सुनते रहिए ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जी।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: डेनिम ऊपर भी और डेनिम नीचे भी। आपको लगता है ये आजकल का ट्रेंड है? नोप्स, लेट मी टेक यू बैक टू द 90s, क्योंकि ये है मस्ती 90s मिक्स टेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव 90s वाली यात्रा आपके साथ है। भाई फैशन के रूल्स ना बहुत ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं हुआ करते थे उस टाइम में, जो है मुझे लगता था खुलापन बड़ा था फैशन के मामले में। सो 90s का बॉलीवुड का फैशन डिपार्टमेंट एक बात पे पूरा बिलीव करता था कि अगर डेनिम अच्छा लगता है तो और डेनिम पहनो। फिर पैदा हुआ द लेजेंडरी डेनिम ऑन डेनिम का लुक। आई ना करिश्मा कपूर की फोटो एकदम दिमाग में सामने, डेनिम शर्ट, डेनिम जैकेट, डेनिम जीन्स, कभी डेनिम कैप भी पहना देते थे। मतलब हीरो या हीरोइन को देख के लगता था कि भाई क्या मतलब फैशन पहना है या पूरा जीन्स का शोरूम निकल पड़ा है। सबसे अमेजिंग बात, उस वक्त किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, सबको लगता था कि भाई बहुत ही कूल लग रहा है। और इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड रीजन भी था। सो 90s के एक्शन और आउटडोर सीन्स में डेनिम बहुत पॉपुलर हुआ करता था, क्योंकि कैमरा पे स्ट्रॉन्ग लगता था, वो ड्यूरेबल लगता था और एक्शन सीक्वेंसेस में स्टाइलिश भी लगता था। इसीलिए कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स डेनिम को मिक्स नहीं करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। सनी पाजी, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, सबने किसी ना किसी फिल्म में डबल डेनिम का फ्लैग जो है प्राउडली कैरी किया है। एंड सॉन्ग्स में तो नेक्स्ट लेवल, ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, खुली सड़क है, विंड मशीन चल रहा है, डेनिम जैकेट पहनी हुई है, बैकग्राउंड में गिटार, बस हीरो रेडी। एंड ऑनेस्टली 90s फैशन का कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग हुआ करता था। अब आजकल देखा जाए तो फैशन मैगजीन्स बोलेंगे कि यू हैव टू बैलेंस योर टेक्सचर्स, यू हैव टू कॉन्ट्रास्ट योर कलर्स, लुक एट द लाइंस। 90s बोलता था नहीं, और डेनिम डालेंगे हम तो। और हम कॉपी भी करते थे, जीन्स के साथ डेनिम शर्ट पहन के लगता था अब तो फुल एकदम बिंदास फीलिंग आ रही है। आई काइंड ऑफ स्टिल लाइक दैट डेनिम ऑन डेनिम काफी, इट्स जस्ट गिव्स यू सच अ गुड वाइब। And I have also, still date, I have it in my wardrobe. And I wear it as well. बहुत शौक से पहनती हूँ मैं। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर बेल, आपके जो है वार्डरोब में डेनिम और डेनिम होगा, बट देन have you tried wearing it like हाल फिलहाल में? Let me know 9159963 में। लेकिन फिलहाल चलेंगे एक डेनिम नहीं 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: कसल से कसल की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: नई चीजों को संजो के रखना, बात कर रहे थे ना हम इसमें टीवी भी शामिल है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। ऑफ कोर्स भाई, डेकोरेशन का मतलब और सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी हुआ करता था कि भाई उसको ना संभाल के रखना है। एंड इफ आई टॉक अबाउट टीवी, 90s के लिविंग रूम में वही एक चीज थी। लेकिन वो सिर्फ टीवी नहीं था और टीवी के ऊपर का क्रोशे वाला कवर भी तो था, और उसके ऊपर वो वास और उसमें जो प्लास्टिक फ्लावर्स आजकल तो बहुत डिफरेंट है, फ्लैट स्क्रीन टीवीज एंड ये सारी चीजें जो है। अगर उस वक्त मतलब ऐसा कुछ आता तो कैसे हम लोग शौक हो जाते हैं। नहीं, हम वैसे भी टीवी देख के शौक हो ही गए थे, क्योंकि हमारे लिए वही इतना बड़ा चीज हो गया था कि टीवी सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं था। It was like ड्रॉइंग रूम की शान है। और अगर आपके घर में टीवी है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट, तो पहले हमारे घर में टीवी नहीं था। इट वॉज मच लेटर जब हमारे घर में पहला टीवी आया, हम दूसरों के पड़ोसियों के घर में जा के टीवी देखते रहे। सो जो जिसके घर में टीवी है वो उसकी ना शान और शौकत बहुत ही ज़्यादा मोहल्ले में अलग लेवल पे हुआ करती थी। और यही से मुझे याद आया कि वो वाइट क्रोशे का हैंडमेड कवर, कभी स्क्वायर का पैटर्न, कभी फ्लावर का डिज़ाइन, कभी साइड से वो लटकते हुए लेस, और उसके ऊपर केयरफुली रखा हुआ वो फूलदान जिसमें प्लास्टिक फ्लावर हुआ करते थे। अच्छा, कोई उस अरेंजमेंट को टच नहीं करता था, टीवी ऑन करना अलाउड, लेकिन फ्लावर्स हिलाना अलाउड नहीं है। उसको ऐसे फोल्ड करके उसके ऊपर रख दिया करते थे, क्योंकि वो बहुत डेंजरस टेरिटरी है। और जब घर में मेहमान आते, लिविंग रूम ऑटोमेटिकली इंस्पेक्शन का जोन बन जाता कि भाई टीवी क्लीन है, कवर सीधा है, फ्लावर्स ठीक जगह पे है कि नहीं है, चलो भाई सब चेक हो गया। क्योंकि 90s में डेकोरेशन जो है शो ऑफ नहीं होता था, केयर होता था। घर की हर चीज को प्यार से मेंटेन किया जाता था, टीवी कैबिनेट को पॉलिश किया जाता था, क्रोशे कवर को धोया जाता था, फ्लावर्स डस्ट फ्री रखे जाते थे। एंड ऑनेस्टली वो क्रोशे कवर्स भी कितने स्पेशल होते थे यार। कई बार तो नानी जो है उन्होंने खुद भी आई थिंक बनाया हुआ था। देयर वाज वंस अपॉन अ टाइम एक एक स्टिच में जो प्यार होता था, पैटर्न में पेशेंस होता था, फिर वो टीवी के ऊपर प्राउडली डिस्प्ले भी होता था। अ लॉट ऑफ टाइम्स माय मॉम यूज्ड टू गो टू दीज हैंडलूम फेयर्स एंड ऑल, वहाँ से लेकर आती थी। आजकल इंटीरियर्स ना बहुत मिनिमलिस्ट टाइप का है, और तब इंटीरियर्स जो है ना बड़े पर्सनल हुआ करते थे। हर कॉर्नर में किसी का एफर्ट जरूर दिखता था, क्योंकि फर्नीचर और डेकोरेशन के बीच में लोगों का प्यार भी विजिबल हो ही जाता था। नहीं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर किसी बातें करती हूँ ना तो मुझे एकदम घर वाली फीलिंग आ जाती है। इट फील्स लाइक दैट आई एम बैक टू माई कानपुर में अपने घर में। एंड वो दीवारें स्काई ब्लू कलर की दीवारें थी हमारे घर में, एंड द पेंट वॉज नॉट द पेंट विच वी सी नाउ डेज। इट वॉज अ वेरी ग्लॉसी काइंड ऑफ पेंट। रिमेंबर पहले के घरों में इस तरह के पेंट्स बड़े होते थे, एंड वाइट एंड ब्लू कलर की दीवारें हुआ करती थी। हाय, वो दिन 90s के वो अमेजिंग दिन।

0: 40% off. 40% Joy Alukas.
1: 40% off? Oh my God! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या जी?
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
3: वाजी, क्या बात जी.
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
5: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: जब जब मैं यहाँ पर ये शो लेकर आती हूँ और अंत में मैं यही बोलती हूँ कि why it is just हफ्ते में एक दिन क्यों ये शो है, because this is the 90s वाला शो। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंशु आपके साथ। यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप एंड दिस इज अ वेरी 90s वाला थिंग कि भाई एक बार देखो फिर अगले हफ्ते तक आपको नए एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज वेटिंग मेड थिंग्स बिगर 90s में। एक्साइटमेंट का मतलब सिर्फ वो चीज नहीं होती थी कि जो मिल गई है, एक्साइटमेंट का मतलब होता था 90s में कि जो अभी मिलना बाकी है। एंड इस फीलिंग का किंग था टीवी के वो लेजेंडरी प्रोमोज कि अगले हफ्ते देखिए मूवी खत्म होने वाली है, सीरियल एंड होने वाला है और अचानक से ड्रामेटिक वॉइस आती थी अगले हफ्ते, बस पूरा घर अलर्ट मूड पे क्योंकि अब आने वाला है नेक्स्ट अट्रैक्शन। एंड प्रोमोस भी कितने पावरफुल होते थे, सिर्फ लाइक 15 या 20 सेकंड के, राइट? लेकिन इमेजिनेशन पूरे हफ्ते के लिए हमारा एक्टिवेट कर देता था वो, कि थोड़ा सा सीन दिखाया, थोड़ा सा म्यूजिक यू नो प्ले कर दिया, थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ दिया और बस एक पूरा हफ्ता उसी के बारे में सोचते सोचते निकल जाता था कि यार नेक्स्ट संडे वाली मूवी ना मस्त लग रही है, मस्त। अरे उस सीरियल में अब क्या होगा। कभी कभी प्रोमो एक्चुअल शो से ज्यादा एक्साइटिंग लगता था इफ यू एक्चुअली कम टू थिंक अबाउट इट, लेकिन फिर भी हम वेट करते थे क्योंकि 90s में एंटरटेनमेंट इंस्टेंट बिल्कुल भी नहीं था, ऑन डिमांड भी नहीं था, आपको उसके पास जाना पड़ता था, वो आपके पास नहीं आता था। और इसीलिए एंटिसिपेशन भी एक्सपीरियंस का पार्ट होता था। आज ट्रेलर देखो, फिर टीजर देखो, फिर बिहाइंड द सीन्स देखो, फिर काउंट डाउन देखो, फिर रिलीज देखो, तब एक प्रोमो और उसके पास पेशेंस। ऑनेस्टली उस इंतजार में भी कितना मजा था, है ना? स्कूल में डिस्कशन चल रही है, घर में प्लानिंग चल रही है, उस टाइम बाहर मत जाना, पूरा फैमिली कैलेंडर एडजस्ट हो रहा है उसके आजू बाजू, है ना? शायद इसीलिए 90s की एंटरटेनमेंट मेमोरीज आज भी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि हम सिर्फ चीजों का वेट नहीं किया करते थे, हम उनके लिए अपने दिल में और अपने वक्त में बिल्कुल जगह बनाते थे। और इसीलिए ये जो शो है हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, बट इसका रिपीट टेलीकास्ट भी आता है बाय द वे इफ यू डोंट नो अबाउट इट। सैटरडे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बिल्कुल इसका ऑनकोर आप कैचअप कर सकते हो। फिलहाल के लिए 90s के गाने कैचअप करिए और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live. 75.

पेंसिल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। '90s में बॉलीवुड के गानों में भाई सीढ़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट थी, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। यहाँ पर मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। और अगर आपने 90s बॉलीवुड के डांस सॉन्ग्स ध्यान से देखे हो तो एक चीज बार बार ये नजर आती है कि अगर हीरो आ रहा है तो सीढ़ियों से आ रहा है, हीरोइन आ रही है तो सीढ़ियों से आ रही है, 100 डांसर्स आ रहे हैं वो भी सीढ़ियों से आ रहे हैं। मतलब कभी कभी लगता था गाना शूट हो या ना हो सीढ़ियां जरूर होनी चाहिए। अरे वाह, वो जायंट से वाइट स्टेयरकेसेस, है ना, कभी पैलेस सेट में, कभी डिस्को सेट में, कभी शादी के गानों में, कभी बिना किसी रीजन के भी। और इसका एक इंटरेस्टिंग बॉलीवुड रीजन भी था। 90s के कोरियोग्राफर्स को ना लार्ज स्टेयरकेस के सेट्स बहुत ज्यादा पसंद थे क्योंकि उनसे डांसर्स को डिफरेंट लेवल्स पे पोजीशन किया जा सकता था। सो नीचे डांसर्स, बीच में हीरोइन, सबसे ऊपर हीरो, और सडनली फ्रेम बहुत काफी ह्यूज लगने लगता था। एक ही कैमरा शॉट में काफी डेप्थ आ जाती थी, मूवमेंट भी है, ड्रामा भी है, एंड स्टेयर्स एंट्री को ऑटोमेटिकली ग्रैंड जो है एक फीलिंग दे देती थी। नॉर्मल रूम में एंटर करो तो ठीक है, लेकिन 20 सीढ़ियां उतरते हुए एंटर करो तो आप एकदम स्टार लगते थे। स्पेशली माधुरी दीक्षित सॉन्ग्स, करिश्मा कपूर के डांस नंबर्स, ग्रैंड वेडिंग सीक्वेंसेस, दूल्हे की साली, ओ हरे दुपट्टे कैसे एकदम सर से माधुरी दीक्षित। वैसे भी हम आपके हैं कौन में स्टेयर्स हैव लाइक स्टेयर्स तो हीरो है, अपने आप में ही उसका एक किरदार है पूरी मूवी में, नहीं बट वेल ऑडियंस को ये सारा चीज देख के लगता था कि यार कितना बड़ा सेट है। आजकल क्या है, क्या मिनिमल सेट्स होते हैं एंड CGI बैकग्राउंड्स होते हैं, तब रियल स्टेयर केसेस होती थी, रियल डांसर्स होते थे, रियल ड्रामा भी होता था। 90s के डांस सॉन्ग्स आज भी इतने विजुअली मेमोरेबल आई थिंक इसीलिए लगते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर है, पता नहीं ये गाना अचानक से भी याद आ गया तो यही प्ले कर देती हूँ, क्या कहते हो, लेट्स गो।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
3: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.
5: प्रेम निशा राहुल अंजलि टीना इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप मस्ती 90s नेक्स्ट डे
6: पता नहीं अचानक से कहां से याद आया बट देन आई थिंक आई नो व्हाई बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट फोन्स जो है कुछ देर पहले एंड देन सडनली आई रियलाइज्ड अभी बैठे बैठे हुए मैं कह रही हूँ ना कि जब भी मैं 90s वाला ये मस्ती 90s मिक्स टेप शो करती हूँ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव व्हाइल आई एम टॉकिंग देर आर सो मेनी मेमोरीज जो वो उचक उचक के बाहर आ जाती है और कहती है कि अरे हे तुम्हें ये याद आया एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स ये कौन बोल रहा है बिल्कुल जी 90s के लैंडलाइन फोन्स ना कभी कभी बड़े क्रिएटिव हो जाते थे कि आप किसी और को कॉल कर रहे होते थे और बीच में किसी तीसरे इंसान की आवाज कर जाती थी क्रॉस कनेक्शन डू यू रिमेम्बर याद आया आप शर्मा अंकल को फोन करने के लिए बैठे हो रिसीवर उठाया नंबर डायल किया अचानक लाइन पे दो अजनबी दो अननोन लोग बात कर रहे हैं एक बोल रहा अच्छा हाँ हाँ फिर करते थे फिर कर ठीक है हाँ हाँ जी मिलते हैं आप बीच में कर रहे हो हेलो हेलो हेलो सो 90s की टेक्नोलॉजी प्रेडिक्टेबल नहीं थी एवरीथिंग वॉज न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर पीपल हु आर ग्रोइंग अप 90s के टाइम पर उनके लिए तो बहुत ही कमाल था उसके भी मूड स्विंग्स हुआ करते थे टेक्नोलॉजी के कभी लाइन बिजी कभी आवाज एको कभी क्रॉस कनेक्शन एंड क्रॉस कनेक्शन का पहला रिएक्शन कंफ्यूजन नहीं होता था कि क्यूरियोसिटी होती थी कि ये लोग कौन है कभी कभी दोनों पार्टीज को पता भी नहीं होता था कि तीसरा बंदा उनकी बातें सुन रहा है पूरा एक्सीडेंटल पॉडकास्ट फिर आप पोलाइटली बोलते थे हेलो लाइन ना क्रॉस कनेक्शन क्रॉस हो गई है एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आती थी सो आज की क्या है कि प्राइवेसी सेटिंग्स हैं एनक्रिप्शन एंड सिक्योर नेटवर्क्स का जमाना है तब टेक्नोलॉजी कभी कभी रैंडमली सोशल नेटवर्किंग करा देती थी एंड लैंडलाइन के कॉन्वर्सेशन भी कितनी रॉ होती थी ना कि कोई देखिए म्यूट बटन तो है नहीं कोई स्पीकर फोन भी नहीं है कोई कॉल वेटिंग नहीं है बस लाइन और लक और क्रॉस कनेक्शन का मतलब था कि आज सिस्टम ने सरप्राइज गेस्ट भेज दिया है भाई 90s का कुछ भी बोलो यार कोई इतना परफेक्शन अगर नहीं था लेकिन हर चीज में पर्सनालिटी बहुत थी कभी कोऑपरेट करती थी कभी ड्रामा करती थी और कभी कभी दो अननोन लोगों की बातचीत फ्री में सुना देती थी How to explain the Gen Z or you know this generation के जो बच्चे हैं कि cross connection क्या होता है वो कहेंगे no, it must be a bug yeah right stay tuned to Radio Mastery 24/7 live

कसल से कसत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ड्रॉप के साथ। आई नो धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट यस एक स्पेशल जो क्वालिटी, आई थिंक एवरी फॉर द पास्ट 3 एपिसोड्स बाय द टाइम हम लोग ये एकदम आखिर की तरफ आते हैं, कुछ ना कुछ मेरे साइकिल की मेमोरी जो है एकदम इसी वक्त पर जो है ऑन हो जाती है। भाई किसी भी गेम के अंदर हम लोग ना 90s के बच्चे जो है बिल्कुल अलग ही एक गेम बना दिया करते थे। सो चाहे वो क्रिकेट के अंदर का चैलेंज हो, लूडो के अंदर का चैलेंज हो, या फिर साइकिल राइड के अंदर का पूरा ओलंपिक्स हो। नाउ ऑफ कोर्स उनमें से ये एक चैलेंज जो मुझे याद आया कि देखते हैं कौन सबसे देर तक पैर जमीन पर नहीं लगाता है साइकिल की रेस के दौरान। अभी रेस शुरू भी नहीं हुई है, कॉम्पिटिशन पहले ही शुरू हो जाता था कि सिग्नल पे रुकना है, ठीक है, लेकिन पैर जमीन पे नहीं लगना चाहिए। बस साइकिल को देखना है कि बैलेंस कितना अच्छा कर लेते हो, लेफ्ट राइट वॉबल करो, हैंडल एडजस्ट करो, एंड समहाउ हवा में सस्पेंडेड रहो। दोनों पैर ऐसे ऐसे फैलाकर, दोनों वी बनाकर किया है आपने साइकिल में। सो ये ऑफिशियली कोई स्पोर्ट नहीं था, लेकिन कॉलोनी के बच्चों के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के बराबर हुआ करता था 90s में। और जो बंदा या बंदी सबसे देर तक बैलेंस कर लेता उसकी रेस्पेक्ट लेवल जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती थी कि यार इसको देखो। अच्छा इसमें कोई प्राइज नहीं, ट्रॉफी नहीं, बस ब्रैगिंग के राइट्स मिल जाते थे, पर वही सबसे इंपॉर्टेंट था। और बैलेंस मेंटेन करते वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन होती थी, उफ, जैसे टाइट रोप पे वॉकर परफॉर्मेंस दे रहा हो। और आज सोचो तो हम साइकिल चलाने अगर निकले, पर एक्चुअल गेम रेस नहीं था, गेम था चैलेंज के अंदर का चैलेंज। या बोर्डम मिटाने के ऐसे अतरंगी तरीके निकाल रखे थे ना 90s के बच्चों ने, तभी वो इतने क्रिएटिव और इतने इमेजिनेटिव है, नहीं लगता नहीं आपको? मुझे लगता है कि अभी इसी बात के साथ हम एक म्यूजिकल 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक में एकदम पैर उठा के, नहीं पैर लगना नहीं चाहिए जमीन पे, बिल्कुल एंटर करते हैं, लेट्स गो।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 40% off, 40% joy alukas,
3: 40% off, oh my god, let's go, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry, and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
5: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: या मेरा मन तो नहीं करता लेकिन क्या करूं अब वो वक्त आ ही जाता है तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, राइट। रेडियो मसीर 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतराब के साथ और यहां पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई एक और एपिसोड यहां पे अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जैसे कैसेट के एंड में वो हल्का सा क्लिक सुनाई देता था ना, वैसे ही आज की ये यादों वाली रील भी धीरे धीरे से जो है अब रैप अप करने के उस पड़ाव पे आ चुकी है। आज हम फिर से गए हमारी 90s के दुनिया में, जहां पे हमें जाना बहुत ज्यादा पसंद है, जहां लैंडलाइन की एक रिंग पूरे घर को गेसिंग गेम में डाल देती थी, जहां हीरो के जूतों से पहले एंट्री होती थी और चेहरा बाद में दिखाया जाता था, ब्राउन पेपर कवर्स और नेम स्लिप्स स्कूल शुरू होने से पहले एनुअल प्रोजेक्ट हुआ करते थे, जहां नया इरेजर यूज करने से पहले उसकी ब्यूटी को एडमायर किया जाता था, बॉलीवुड के हीरोज का और हीरोइंस का डबल डेनिम पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया जीतने निकल पड़ना was another thing, right? जहाँ पे coming next week देख के पूरा हफ्ता excitement में निकल जाता था, जो कि इस शो के लिए बिल्कुल बिल्कुल फील किया जाता है। But 90s की यादों में इतना magic क्यों है? क्योंकि उस वक्त हम हर चीज को थोड़ा धीरे धीरे आराम से पॉज लेके जीते थे। गाना आया तो पूरा सुनेंगे, फोन आया तो क्यूरियोसिटी के साथ उठाएंगे, मूवी आई तो उसका इंतजार होगा, नई स्टेशनरी मिली तो उसे यूज करने से पहले उसे बिल्कुल जी भर के निहार लेंगे। आजकल क्या है ना कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उस वक्त अटेंशन ज्यादा था और इसीलिए हर छोटी सी छोटी चीज जो है वो मेमोरी बनकर रह गई है। खूबसूरत सी एक साइकिल, एक टीवी कैबिनेट, वो क्रोशे कवर, सब कहीं ना कहीं दिल के एल्बम में जो है छप के रह गए हैं। 90s की सबसे बड़ी लग्जरी न केवल टीवी थी, न वीडियो गेम्स था, न इंपोर्टेड चॉकलेट्स थे मेरे दोस्त। 90s की सबसे बड़ी लग्जरी थी कि हमें किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी। बिल्कुल मुझे जो है बिल्कुल आज की डेट में दीजिए इजाजत। बिल्कुल इसका ऑनकोर आप सुन सकते हैं सैटरडे को सुबह 8 से 10 एंड नए एपिसोड के लिए अगले हफ्ते बिल्कुल तैयार रहिएगा। सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड।

0: पर
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: सिंगापुर। बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
5: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
2: राइट.
1: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
2: Nadi
1: jamais je t'aime. Ah, it's so sexy.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti subah 6 baje se.
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
4: आई लव यू रसना,
3: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Masti 24/7 Live.

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh
5: Purush nahi. Mahapurush hai, mahapurush.
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: प्रणाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
3: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो सिंगापुर, हेलो नमस्कार, आई एम अ वेरी वार्म वेलकम। शो शुरू हो चुका है, अ ब्रांड न्यू शो। मैं हूँ मुग्धा आपके साथ एंड दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर। मैं बता चुकी हूँ कि मैं मुग्धा हूँ लाइव फ्रॉम द स्टूडियो, और जैसे कि हर एक नया दिन अपनी एक नई एनर्जी लेकर के आता है, वैसे आज का जो दिन है वो भी अपने साथ एक नई एनर्जी लेकर के आया है। कुछ वेरी फ्रेश कॉन्वर्जेशंस, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ, कुछ बहुत सी बातें प्यारी प्यारी, और बहुत सारी गुड वाइब्स, इंक्लूडिंग हमारे सिंगापुर की बहुत सारी गप शप। वैसे आज क्या है, 11 जून, राइट? पता है आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले सेलिब्रेट किया जाता है, और सच कहूं प्ले जो है ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता है। कभी कभी एक फन कॉन्वर्सेशन देख लो, कभी कोई क्विज, कभी एक सिंपल सा गेम जो है हमारे दिन को कितना लाइट बना देता है ना। तो चलिए आज के शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बहुत सारा फन, बहुत सारी क्यूरियोसिटी और कुछ ऐसा जो आपको एंगेज रखेगा फुल ऑन।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: आर यू रेडी?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, एक बात बताइए, हम सबके पास ना कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि हमें बहुत नॉर्मल लगती है ना, अब उनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा या वो करेंगे तो वो हो जाएगा। नॉर्मल हैबिट्स लाइक हैबिट है, जैसे कि च्युइंग गम चबाना कितना नॉर्मल है ना, मतलब वी जस्ट डू इट लाइक एनीथिंग। लेकिन दुनिया बहुत फैसिनेटिंग है, पता है, जो चीज किसी कंट्री में बिल्कुल रूटीन टाइप्स लगती है वही किसी और कंट्री में आपको सरप्राइज कर सकती है या किसी मुसीबत में भी डाल सकती है। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो ये जो च्युइंगम है ना, यहाँ पे च्युइंगम का रूल अक्सर दुनिया भर में ट्रैवलर्स को बहुत क्यूरियोसिटी वाले मोड में डाल देता है। बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे च्युइंगम चबाना इलीगल है, लेकिन असल में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस गम की सेल और इम्पोर्ट पर हैं। ये जो रूल है ना वो सालों पहले पब्लिक स्पेसेस और MRTA सिस्टम को क्लीन रखने के लिए और एफिशिएंट रखने के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सो व्हाट आई फील कि ये सिर्फ च्युइंगम की कहानी नहीं है, ये बताती है कि हर सिटी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। कुछ सिटीज अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस होती हैं, कुछ अपनी हिस्ट्री के लिए, और सिंगापुर अपनी क्लीनलीनेस, अपनी डिसिप्लिन, अपने अटेंशन के लिए और डिटेलिंग के लिए बहुत याद रखा जाता है। तो सौ बात की एक बात की सरकार ने ना बहुत ही कमर्शियल गम सेल जो है उसको बहुत लिमिटेड कर दिया था 1992 के बाद से, ताकि जो जो डैमेज ट्रेन डोर्स को, एलिवेटर्स को और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हो रहा है वो जो है वो होना कम हो जाए। हालांकि कुछ थेरेप्यूटिक च्युइंगम्स हैं जो अभी भी अलाउड हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, बट ऑर्डिनरी सेल जो है वो अभी भी बहुत ही टाइटली रेगुलेट की जाती है सिंगापुर में, है ना, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। वैसे अगर आपको ऐसे क्वर्की फैक्ट्स, करंट अफेयर्स, दुनिया भर की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो याद रहती है रखना बहुत पसंद है, तो मस्ती मीडिया नेटवर्क जो है वो लाइन सिटी चैलेंज लेकर आया है, सिंगापुर का स्मार्टेस्ट गेम शो जहाँ पे नॉलेज जीतता है। यू जस्ट हैव टू टेक्स्ट LION 9151896 पर, और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो हमारी टीम आपको स्वयं समझा देगी, पर टेक्स्ट तो करो। और इसके बारे में और विस्तार से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ब्रेक के बाद देने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: सो ब्रेक पर जाने से पहले आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस लायन सिटी का क्विज, क्वर्की क्विज क्वेश्चन, राइट? सो स्टूडियो की ब्राइट लाइट्स हैं, सामने एक होस्ट है, कैमरा टोटली आप पर फोकस है, ऑडियंस की नजरें आप पर हैं। अब आप सोचेंगे रेडियो में ये कहाँ से आ गया, ये रेडियो वाले आपको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जी, पूरे ऑडियंस जो है उसकी नजर सिर्फ आप पर है। और कैसे, एक सवाल है जो आपको जीत के और करीब लेकर जा रहा है धीरे धीरे, पर आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? Well, अगर आप ऐसे किसी ग्रैंड शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसको देखकर आप सोचते हैं काश मैं भी वहां बैठा होता, तो मैं आपको बताऊं आपके पास मौका है। सिर्फ सोचिए मत, मस्ती मीडिया नेटवर्क के द लायन सिटी चैलेंज सिंगापुर स्मार्टेस्ट गेम शो का हिस्सा बनिए, जहां पे नॉलेज जीतता है। एंड ये कोई ऑनलाइन क्विज नहीं है, इट्स अ ग्रैंड गेम शो एक्सपीरियंस। पता है आपको, सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको स्टूडियो में बुलाया जाएगा, प्रोफेशनल शूट होगा और बाद में इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। जी, सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आप सवालों के जवाब नहीं देंगे, आप एक एक्चुअल गेम शो का के कंटेस्टेंट होंगे, आप उसका हिस्सा बनेंगे। तो अब वहां तक पहुंचने के लिए कुछ तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहली सीढ़ी है 9151863 पर LION लिखिए और रजिस्टर हो जाइए। उसके बाद हमारी टीम आपको एक एक करके सारे स्टेप्स बताएगी। आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, दो क्वेश्चन होंगे, उसको क्वालिफाई करके आप आगे जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए उनका सही जवाब देना होगा एंड मेनी मोर स्टेप्स अहेड, लेकिन द फर्स्ट स्टेप टू रजिस्टर इज LION और इसको भेजना है 9151 8963 पर। सो

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर, जी जी मार्ट इज देयर।
5: क्या
6: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
5: वाजी, क्या बात जी।
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
7: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
8: रात चलते किसी से बात करनी हो, स्ट्रेंजर से, वैसे तो घर में से खा के भेजते किसी अजनबी से बात मत करना, लेकिन एक अजनबी अगर मिली जाए तो क्या करें? मैं बताती हूँ सबसे आसान टॉपिक, अगर आपको किसी कॉन्वर्सेशन को भी नाउ डे स्टार्ट करना है तो नो व्हाट, वेदर। सच बताऊँ, दिस इज द परफेक्ट टॉपिक किसी से बात शुरू करने के लिए। सच बताइए, आप भी अगर पिछले कुछ दिनों से ये कह रहे हैं कि आज कितनी गर्मी है, तो सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर ना लोग इसी बात पर डिस्कशंस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि घर राइस कुकर जैसा लगने लग गया, बात तो बिल्कुल सही है। कुछ पोर्टेबल फैंस के बिना बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है और कुछ तो ऑफिशियली एयर कंडीशनर कैंप में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट? ऑनेस्टली क्या है ना, मुझे लगता है कि सिंगापुर में वेदर सिर्फ वेदर तो कभी रहा ही नहीं है, ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। हाँ, कोई एक कभी यहाँ एक साथ नहीं रहता, अकेला कोई नहीं रहता। बस स्टॉप पर आप खड़े हो जाओ, MRT से बाहर निकलो, लंच के लिए 2 मिनट वॉक कर लो, एक ही चीज आप फील कर रहे हो कि भाई साहब बहुत गर्मी है, पूरा शहर ये बात कह रहा है। एग्जैक्टली। एक इंटरेस्टिंग सवाल पता है क्या, आपका पर्सनल सिंगापुर हीट सर्वाइवल हैक क्या है? पोर्टेबल फैन, कोल्ड कॉफी, एक्स्ट्रा शार्स या सीधा एयरकॉन? मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि सिंगापुर में लोग इस बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं, इन बातों पे कॉन्वर्सेशन हो रही हैं, डिस्कशन पैनल्स बन रहे हैं और लोग तो कह रहे हैं भैया शिफ्ट हो जाए क्या, अरे क्या और कहीं गर्मी नहीं पड़ती है? हैं, मैंने कल ही इंडिया फोन पे बात करी थी, भाई साहब वहाँ तो और खतरनाक गर्मी पड़ रही है। मुझे लगता है गर्मी सब जगह गर्मी होती है, जिसकी जैसी होती है उसको ज्यादा लगती है ना। नहीं, मुझे ठंड लग रही है, स्टूडियो में बहुत ठंडा रहता है।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई।

0: इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी मस्ती भी सार्कैज़म भी सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, शो के सेकंड आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंगापुर, अगर आप ज्वेलरी खरीदने के प्लान को काफी टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे, अभी भी सोच रहे बैठ के कि आज नहीं कल नहीं परसों, सो जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, अब आपको ना वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और जरूरत भी नहीं, वक्त भी नहीं आपके पास वेट करने का। वाई जोया लुकास एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल। अच्छा, आपने अभी पहली बार सुना, कोई बात नहीं, जोया लुकास इज हियर विद द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल। और यहाँ पे पता है क्या, 40% ऑफ है ऑन द मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड डायमंड पोल की या एनी प्रेशियस ज्वेलरी, मेकिंग चार्जेस पे 40% ऑफ है। एंड साथ में अगर आप चाहें तो आप जो डायमंड एक्सचेंज करेंगे उस पे 100% का एक्सचेंज वैल्यू भी है। एंड इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग, इजी पेमेंट प्लान्स भी हैं। अब आप चाहे किसी स्पेशल ओकेशन के लिए ले रहे हो, या वेडिंग सीजन की तैयारी कर रहे हो, या बस यही लेना था सोच रहे पर ले नहीं पा रहे, तो दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू, बिकॉज अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 जून तक ही ये ऑफर वैलिड है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके कैलेंडर में कितने और दिन बचे हैं मार्क किए हुए। बेसिकली द काउंटडाउन बिगिंस, हो चुका है लास्ट वाला। तो जल्दी से जाइए अपने नियरेस्ट जोया लुकास जो शोरूम है वहां से, फटाफट से इस ऑफर का लाभ उठाइए और शॉपिंग करके आइए।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जी।
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: बॉलीवुड में स्पाइस की कोई कमी नहीं है, कभी भी नहीं होती है, लेकिन पहली बार स्पॉटलाइट पूरी तरह से फीमेल सेंट्रिक स्पाई पर है। यस, आलिया भट्ट की जो अल्फा है ना, उसका टीजर जो है वो आ चुका है, एंड ऑनेस्टली एक इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हो चुकी है। एक तरफ जो फैंस हैं वो आलिया के एक्शन पैक्ड अवतार को देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इनफैक्ट मैं तो बॉबी देओल को देख करके बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। द टीजर इज क्वाइट डार्क एंड वेरी इंटेंस, एंड क्लियरली इसका पूरा सिग्नल यही है कि स्पाई यूनिवर्स एक नई दिशा में जा रहा है। लेकिन एक तरफ वो वर्ग है सोशल मीडिया पर जो एक सवाल पूछ रहे हैं, शर्वरी कहाँ है? सी, फिल्म में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने के बावजूद टीजर में उनका प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। फैंस ऑलरेडी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर चुके हैं, क्या मेकर्स कुछ बड़ा सरप्राइज हाइड कर रहे हैं, या टीजर के बाद अभी जो एक और कोई टीजर 2 टीजर 3 आएगा जहां पे शर्वरी की असली सच्चाई को सामने लाया जाएगा, ऐसा क्या हाइड कर रहे हैं जो दिखाना नहीं चाहते हैं, या फिर असली गेम रिवील होना अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो क्या है ना, जब टीजर से ज्यादा उसमें मिसिंग चीजें आपको दिखने और डिस्कस होने लग जाए तो समझ जाइए क्यूरियोसिटी लेवल इज वेरी हाई। आलिया दिख गई, लोग शर्वरी कहाँ जाना चाहते हैं, इसका मतलब शर्वरी को लेकर जो क्यूरियोसिटी लेवल है दैट्स वेरी हाई, स्काई हाई। बॉबी देओल इज सुपर अमेजिंग यार। देखते हैं अल्फा सिर्फ एक्शन डिलीवर करती है या फिर देखा जाए कि बॉलीवुड की एक नेक्स्ट बिग फीमेल लीड ब्लॉकबस्टर सामने आएगी। इंतजार बहुत ज्यादा लंबा है नहीं, जुलाई में रिलीज हो जाएगी। स्वैग।

was the message, eh?

0: बैग से करेंगे सबका स्वागत।
1: To Shahi Maharani for the special treat.
2: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
3: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
2: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you. We love you.
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
6: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
7: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
8: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: As I always said, एक इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, और हमारे सिंगापुर में कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो जानते हैं कि हमारे दिल को क्या चाहिए, तभी तो पेट तक, मतलब पेट से हमारे दिल तक सही तरीके से पहुंच जाते हैं। एंड वन ऑफ देम इज शाही महारानी, शाही महारानी एट राफेल सिटी सेंटर। आपको पता है 25 सालों से ये हमारे शहर में सर्व कर रहे हैं अमेजिंग ऑथेंटिक काइंड ऑफ नॉर्थ इंडियन फूड, जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये रेस्टोरेंट फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फूड लवर्स के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप आग बंद करके जा सकते हैं फॉर द रॉयल नॉर्थ इंडियन फ्लेवर। और अब ये 25 साल पूरे होने की खुशी में उसे हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाही महारानी जो है वो लेकर आए हैं एक स्पेशल सेलिब्रेशन, आप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं उनके बिलव्ड सिग्नेचर डिशेस जैसे कि चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन मक्खन वाला, पालक पनीर एंड मेनी मोर फेवरेट्स। उनके एनिवर्सरी स्पेशल प्राइस पर वो क्या है, 25++ सिंगापुर डॉलर्स, समझ रहे हैं। नाउ देयर इज अ कंडीशन, बस ये है कि एक तो डाइन इन होगा, आप टेक अवे नहीं कर सकते, एंड सेकेंडली जिस टेबल पर आप बैठे हैं उस टेबल का ओवरऑल बिल जो है वो $100 या उससे ज्यादा होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद ये हर एक सिग्नेचर डिश जो आप मंगा रहे हैं, आप खा रहे हैं, दैट इज लाइक $25 में आपको मिलेगी। सो इट्स गुड ना, आपके दिल के रास्ते के लिए क्या एग्जैक्टली चाहिए वो उनको पता है, इसीलिए उनके इन 25 ईयर्स के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। चाहिए चाहिए चाहिए, खाने की बात आए तो मैं पीछे नहीं हूँ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा।
1: हाँ जी जी।
0: आधा केजी मसूर दाल।
1: जी जी।
0: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 3, 2, 1।
3: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज़म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live.
6: So my comedy lovers, तैयार हो जाइए। Officially एक ऐसी कॉमेडी मूवी का अनाउंसमेंट हो रहा है जो आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर सकती है। धमाल 4 की रिलीज डेट ऑफिशियली लॉक कर दी जा चुकी है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्षद वारसी, पूरी गैंग आपको 10 जुलाई 2026 को सिनेमा हॉल्स में फुल लाफ्टर राइट में दिखाई देगी। मेकर्स ने एक नया लोगो, कैरेक्टर पोस्टर सब कुछ रिवील किया है। इससे क्या है, फैंस का एक्साइटमेंट भी बढ़ गया है और थोड़ा डेट लॉक होने से एक राहत की सांस भी आ गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताया गया, फिल्म जो है अपनी पहली वाली रिलीज डेट से एक हफ्ता पहले आ रही है। इट्स प्रीपोन्ड। अभी अल्फा भी प्रीपोन हुई थी, याद है आपको? मतलब क्या है ना कि मैडनेस और जो ट्रेजर हंट वाला, जो मस्ती वाला फील है, वो आपको और ज्यादा जल्दी देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है मेकर्स को काफी भरोसा है फिल्म पे, दैट्स व्हाई दे आर प्रीपोनिंग द फिल्म। क्या बात है, पहले पोस्टपोन के जलवे थे, अब प्रीपोन के जलवे। ऐसा क्या आ रहा है जिस

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, शो के थर्ड एंड लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, मैं हूँ फूडी, मुझे अपने ड्रॉज में आसपास हमेशा कुछ ना कुछ कचर कचर पकड़ पकड़ चाहिए खाने के लिए। क्रंची मंची सॉर्ट ऑफ पर्सन है ना। क्या आप उन लोगों में से हैं जो एक पैकेट ड्राई फ्रूट खोलते हैं और फिर कहते हैं कि बस इतना ही? नहीं नहीं, और देते देखते पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। यू नो, क्रंचिंग मंचिंग स्नैक्स सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर आपको क्रंची कैश्यूज, रोस्टेड आलमंड्स, टेस्टी पिस्ताज और ये सब कुछ बहुत पसंद है ना, सो हियर यू गो। जीजी मार्ट जो है ना, वो लेकर के आए हैं क्रशेबल नट्स, ड्राई फ्रूट लवर्स के लिए, इस तरह के हेल्दी स्नैकिंग जो मंच लवर्स हैं, मंचिंग लवर्स जो हैं, उनके लिए दिस इज हेवन। एक मतलब कंपेनियन है वो आपके लिए। क्रशेबल की पता है खास बात क्या है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेस्ट, क्वालिटी जो है वो सीधा फार्म से आपके पास तक आ रही है। फार्म फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, 100% ऑर्गेनिक की इसमें गुडनेस है। और फ्लेवर्स खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, खाने के बाद कहेंगे और चाहिए और चाहिए। एंड कमाल की बात, ऑनलाइन है तो और चाहिए के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठे ही सब कुछ आपके डोरस्टेप पर, आपके घर पर। ggmartonline.com समझे। यहाँ पे मैकेडेमिया नट्स हैं, यहाँ पे रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्ताचोज हैं, हेजल नट, पम्पकिन सीड्स, असॉर्टेड नट पैक्स भी हैं, यहाँ पर मखाना है, ओ माई गॉड व्हाट नॉट, सब कुछ है। तो अगली बार जब हेल्दी और टेस्टी स्नैकिंग का मूड हो तो जीजी मार्ट से क्रशेबल जरूर ऑर्डर करना, देखना फिर। ओके, वाह मुग्धा, क्या बताया है तुमने।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर।
3: आज का सबसे रिलेटेबल इंसान कौन है? एक्चुअली वो इंसान है ही नहीं। जापान के एक ज़ू में ना कियोमासा नाम का एक गोरिल्ला है और वो हो गया है वायरल। यूजुअली पांडाज होते हैं पर यहाँ पे गोरिल्ला वायरल है। जापान के एक ज़ू में ना ये जो कियोमासा नाम के गोरिल्ला है वो वायरल क्यों है? There's a very interesting reason. एक फीमेल गोरिल्ला के साथ छोटी सी लड़ाई हो गई और उस टिफ के बाद जनाब ऐसे बैठ गए जैसे कि लाइफ के सारे डिसीजन जो है वो रिकंसिडर कर रहे हो। चिन हाथ पे रख कर, नजर दूर कहीं, ऐसे एक्सप्रेशन बिल्कुल जैसे कि दोस्त को बोल रहे हो, यार मैंने ऐसा क्या कह दिया यार, ये भगवान गोरिल्ला भी दुखी है अब तो, क्या करते हो यार तुम लोग। वीडियो जो है ना उसको देखकर इंटरनेट का रिएक्शन बहुत ही कमाल का है। कोई कह रहा है ये मैं हूं आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, कोई कह रहा है भाई परफेक्ट कमबैक है, 3 घंटे लिए सोच रहा है ये। ऑनेस्टली कभी कभी लगता है ना ह्यूमंस और गोरिल्लास इनमें सच में डिफरेंस नहीं है, दोनों अपनी अपनी वालियों से दुखी है। हाँ तो इसमें क्या है, ये इसमें फेमिनिन होने की क्या बात, नहीं वो फेमिनिन कहते फेमिनिज्म होने की क्या बात, लाने के बीच में है तो है, अब है बेचारा दुखी। देखना वीडियो बड़ा क्यूट है। यस, सुन रहा आप मुग्धा को, स्टे ट्यून्ड।
4: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज, रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: आपको पता है, दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानियाँ कई बार इंसान नहीं जानवर लिखते हैं। आप कहेंगे आज एनिमल स्पेशल है, नहीं, पर हरकतें वो अच्छी कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। ब्राजील में एक पेंगुइन है, उसने कुछ ऐसा ही किया है। पर उस पेंगुइन का नाम क्या है? डिंडिम। ओ डिंडिम डिंडिम डिंडिम डिंडिम डिंडिम। ओके फाइन, मैं भावनाओं में बह गई। कुछ साल पहले ना वो मतलब तेल में कवर्ड, ऑयल में, ऑलमोस्ट डाइंग कंडीशन में बीच पर मिला था। एक फिशरमैन ने उसकी जान बचाई, उसका ख्याल रखा और फिर उसे वापस समंदर में छोड़ दिया। स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। हो सकती थी पर हुई नहीं। हर साल ये पेंगुइन हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वापस उसी इंसान से मिलने आता है जिसने उसकी मदद की थी। सोचो, हम कहते हैं ह्यूमंस में ब्रेन कम है और इसमें ज्यादा है उसमें। अब आप बताओ कैसे उसको याद रहता है कि किसने जान बचाई, कहाँ जाना है, किधर करना है, क्यों ही जाना है, मतलब बचाई बचाई तो सब ठीक, जाना ही क्यों है। पर ये पेंगुइन आता है 8000 किलोमीटर का सफर तय करके हर साल। ओ माय गॉड, मुझे लगता है इस स्टोरी की सबसे ब्यूटीफुल जो पार्ट है स्टोरी का, दैट इज डिस्टेंस। नहीं, डिस्टेंस भी नहीं है बल्कि काइंडनेस है, वो काइंडनेस जो कभी वेस्ट नहीं जाती है। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा डीड जो है ना, गुड डीड अगर आप करते हो, किसी के दिल में वो इतना गहरा बस जाता है कि इंसान हो या पेंगुइन, 8000 किलोमीटर का सफर तय करके आपसे मिलने आ सकता है वो। एंड सोचिए उस फिशरमैन को कितना अच्छा लगता होगा जब वो पेंगुइन सिर्फ उससे मिलने आता होगा। ओ माय गॉड, कितना स्पेशल फील होता होगा। इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए दोनों को। पाक, पाक, पाक।
2: घर से थे चले तो ये बात हो गई।
1: हाँ और क्या,

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: मेरे यारों, मेरे प्यारों, दिलदारों, ओके माय दिलदारों, इसी के साथ मस्ती हैंग आउट पर आज का सफर यहीं पे खत्म होता है। इट्स टाइम टू रैप अप द शो, पर कहते तो है शो मस्ट गो ऑन। आगे जो शोज आ रहे हैं वो सुनना, मैं थोड़ी बोलती रहूंगी, मेरे को आज नींद आ रही है पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा। खैर, ये अलग अलग मूड्स एंड वेरिएशंस है जो माइक के इस तरफ होते रहते हैं। आज हमने बहुत सी कहानियां सुनी, मैंने आपको बताई, हमारे साथ एक दूसरे के साथ शेयर करी, है ना, मतलब मजा आया। जाने से पहले एक थॉट छोटा सा, हर एक रेडियो जॉकी की जर्नी जो है कहीं ना कहीं से यहां से शुरू होती है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, एज अ लिसनर, ये एक ऐसी बात है जो मेरे दिमाग में घर कर गई है और ये मैं आपको बार बार कहती रहूंगी, लगातार कहती रहूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ आरजेस, बहुत से आरजेस की जर्नी एज अ लिसनर ही शुरू होती है। वो सुनते हैं, वो इम्प्रेस होते हैं, उनको लगता है वो भी ये कर सकते हैं, एंड देन द जर्नी बिगिंस, है ना। कभी सोचते होंगे बैठ के कि उधर जाने का मौका मिलेगा, ख्याल आता होगा। कभी माइक के इस तरफ बैठ करके सिर्फ माइक को देखकर दुनिया से बातें करने का मन करता होगा, क्योंकि ये रियलिटी है। हम देख कुछ नहीं सकते पर सब कुछ दिखा सकते हैं सिर्फ अपने विजन के थ्रू, है कि नहीं। तो अगर आपके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया है, ये मौका आपके लिए आया है, हम लेकर आए हैं उस ख्याल को पूरा करने का। मस्ती मीडिया नेटवर्क की आरजे एकेडमी में एडमिशन्स ओपन है। हाइब्रिड लर्निंग मॉडल है, बिगिनर से लेकर एडवांस तक का ये पूरा मौका है आपके पास। फ्लेक्सिबल सिलेबस है, एज लिमिट इज 14 साल और उससे ऊपर। अभी हम बच्चों को सिखा नहीं पा रहे, मैं बस इतने टैलेंटेड लोग नहीं जो बच्चों को सिखा पाए, तो 14 और उससे ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है। सिलेक्टेड जो ट्रेनीज होंगे उनको हम एक प्रॉपर शो करने का मौका देंगे, रेडियो मसी 24/7 लाइव स्टूडियो से बैठ करके लाइव शो करने का मौका इस कंसोल के साथ। ओह माय गॉड, आर यू इंटरेस्टेड? अगर आप हैं तो एक छोटा सा इंट्रो लिखिए अपना और हमारे मेल आईडी पर भेजिए info@radiomasti.com.sg। अगर आप गलती से भी मेल आईडी भूल जाते हैं, हमारे ऐप पर, हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आपको ये आईडी मिल जाएगा info@radiomasti.com.sg। अपना एक छोटा इंट्रो लिखिए, आगे का काम आपको खुद हम समझा देंगे और हम संभाल लेंगे। चलिए अगली मुलाकात तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सुनते रहिए मुग्धा को, मजे करिए, एंजॉय करिए।

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी।

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

from the wrong place. If they were left, maybe they made room for who is coming. The universe protects you in ways that look like bad luck at first. Trust the detour. काफी अच्छा सा थॉट है ना? नहीं लेकिन सच बताऊं, जब लाइफ में कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है ना, उस वक्त ये बातें समझना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है. जब रिजेक्शन मिलता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब कोई प्लान फेल हो जाता है, या जब जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे का रास्ता क्लियरली दिखाई नहीं देता, तब हम एक ही सवाल पूछते हैं, व्हाई मी? लेकिन शायद कुछ आंसर्स वक्त के पास होते हैं, और शायद कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां डेस्टिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट डिटोर होता है. हेलो, हाय, वेलकम, नमस्कार. जी हाँ, डियर मस्ती दिल से शुरू हो चुका है ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं हूँ आरजे आंट्रा, ऑफकोर्स ये तो आपको पता चल ही गया होगा. और ये जो शो है ना, हमने बहुत प्यार और बहुत सोच समझ कर क्यूरेट किया है. एक ऐसी सेफ स्पेस बनाने की कोशिश की है जहाँ आप अपने दिल की कोई भी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली कभी कभी किसी टोटल स्ट्रेंजर से बात करना आसान लगता है. मैं भी ये फील करती हूँ, क्योंकि जब हम अपने दिल की बात किसी अपने को बताते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा एक डर रहता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. और कभी कभी जो लोग हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी अनजाने में ही सही हमें जज कर बैठते हैं. हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरे जरूर है, इसीलिए ये 3 घंटे, ये स्पेस, ये कॉन्वर्सेशंस सब आपके नाम. यहाँ कोई नेम्स नहीं लिए जाते, आपके लिए हम डियर मस्ती और हमारे लिए आप है डियर लिसनर. बस इतना सा रिश्ता है, बिल्कुल उन लिसनर्स की तरह जो हमें अपनी कहानियां, अपनी उलझने, अपने दिल की बातें जो है यहाँ पर लिख कर भेजते हैं. अगर आप भी हमें लिखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 9158963 पर, या पर किसी भी ईमेल आईडी से हमें ईमेल भेजिए listener@radiomasti.com.sg पर. आपकी आइडेंटिटी हमेशा अनोनिमस रखी जाएगी. अब वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. ये वाला गाना सुने, पीछे मुड़के नहीं देखना है, बस आगे बढ़ते रहना है. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से.

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
0: एक्साइटेड
2: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963. 40% off, 40% joy, Lucas.
3: 40% off? Oh my God! Let's go, let's go!
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
5: Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon.
4: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.
6: Dear Masti, Dil Se, because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
7: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7 Live. मैं हूँ अंतरा और इस वक्त हम तैयार हैं अपनी पहली चिट्ठी के लिए. जी हाँ, ये वही शो है जिसका नाम है Dear Masti Dil Se, जहाँ पर हम आपकी चिट्ठियाँ ही पढ़ते हैं without taking your names. So चलिए हमारे dear listener ने क्या लिखा है. Dear Masti, I am one of those people जिसको दूसरों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है. I like doing things for people. सबको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है. But of late, I am having this uncomfortable feeling that काफी सारे लोग, despite me always being on their side and helping them out, I think behind my back, they make fun of me. To be honest, मैंने actually गलती से ही सुन लिया था, and I was and still am hurt. What did I do to deserve this kind of reaction? I am good to everyone. Then why? So dear listener, आपका लेटर पढ़ते-पढ़ते मुझे एक बात याद आ गई जो मैं खुद को एक टाइम पर, you know, बार-बार कहती थी, because I know what you're talking about. And वो बार ये है कि you can never, never, never keep everyone happy. सच कहूँ, आप नहीं कर सकते. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है. आई एम आल्सो वन ऑफ देम. हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल, हमारा नेचर जैसा होता है. लेकिन कभी कभी धीरे धीरे हम ये मान बैठते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो लोग भी हमारे साथ हमेशा ही अच्छे होंगे. और जब रियलिटी उससे मैच नहीं करती है तो दिल टूट भी जाता है. और शायद इसीलिए आपका दिल आज आपको वो अनकंफर्टेबल सी फीलिंग दे रहा है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है. और शायद वो फीलिंग सही भी है. लेकिन एक बात याद रखिए, किसी और का बिहेवियर आपकी वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं होता. कभी कभी लोग किसी की काइंडनेस को अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी उसका एडवांटेज लेते हैं और कभी कभी उसका मजाक भी बना देते हैं. लेकिन उसमें उनका कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देता है, आपका नहीं. और शायद अब वक्त आ गया है एक इम्पॉर्टेंट सवाल अपने आप से पूछने का. क्या आप लोगों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आपको करना पसंद है, या इसलिए क्योंकि आप उनसे अप्रिसिएशन, लॉयल्टी या एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि अगर आप अपनी गुडनेस को लोगों के रिएक्शन से मेजर करेंगे तो बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट आएगी आपके हाथों. लेकिन अगर हम अच्छे, यू नो, इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी चॉइस है, तो फिर किसी और की ओपिनियन हमारी, यू नो, शांति को भंग नहीं ही कर पाएगी. सो यू थिंक अबाउट इट अ बिट. मैं लौट कर आती हूँ, फिर बात करते हैं कि मैं इस सिचुएशन को किस हिसाब से देखती हूँ और मुझे क्या लगता है कि क्या मैं करती, राइट? तब तक के लिए ये वाला गाना सुने.

कभी कभी होता है ना कि हम बिल्कुल भी कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए सोचते रह जाते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आई विल बी राइट बैक ऑन डियर मस्ती। दिल से स्टे ट्यून्ड।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Dear Masti, दिल से, because sometimes radio पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7 Live. मैं हूं अंतरा यहां पर आपके साथ। So, आज के लेटर में थोड़ी देर पहले जो पढ़ा हमारे डियर लिसनर ने, ये लिखा कि उन्हें दूसरों के लिए करना काफी अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को अपने पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हुए सुना तो वो बहुत हर्ट हुए और उनका सवाल ये था कि मैं सबके साथ अच्छा हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो माई डियर लिसनर, अब मेरी बात ना बहुत ही ध्यान से सुनिए। जिंदगी में लोग आपको यूज करेंगे, कई बार करेंगे, कई तरीकों से करेंगे, कुछ मैनिपुलेट शायद करेंगे, कुछ शायद कभी झूठ बोलेंगे, कुछ तब तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होंगे। और हाँ, जब पहली बार ये सब पता चलता है ना तो यस, दिल थोड़ा सा नहीं काफी सारा टूट जाता है, क्योंकि आपने उनकी बातों पर यकीन किया था, उनकी इंटेंशंस पर ट्रस्ट किया था, और शायद क्योंकि आप खुद जेन्युइन हैं, आप ये मानकर चलते हैं कि हर कनेक्शन जो आप बनाते हैं वो भी जेन्युइन ही होगा। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे एक बहुत ही हार्ड लेसन सिखाती है हमें, हर वो इंसान जो आपकी लाइफ में आता है वो रहने के लिए नहीं आता है। कुछ लोग ना सिर्फ एक लेसन बन के आते हैं, कुछ बाउंड्रीज सिखाने के लिए आते हैं, कुछ आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, और कुछ आपको ये डिफरेंस समझाने के लिए आते हैं कि किसी को आपकी जरूरत होना और किसी का आपकी वैल्यू करना दोनों अलग बातें हैं। लेकिन जब अब जो मैं कहने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट बी बिटर, राइट? दुनिया ने अगर आपको हर्ट किया है तो आपकी काइंडनेस को यू नो यू जस्ट कैन नॉट पनिश दैट। अच्छा इंसान रहना अच्छी बात है, बस थोड़ा वाइजर बनना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा फिल्टर कीजिए, थोड़ा नहीं काफी सारा फिल्टर कीजिए, और थोड़ी नहीं काफी सारी बाउंड्रीज भी लगाइए जितनी आपकी जरूरत है, क्योंकि बाउंड्रीज वॉल नहीं होती है, ये मैं सबसे कहती हूँ, बाउंड्रीज आर डोर्स, राइट? वो डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में कौन एंटर करेगा और कितनी देर के लिए। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सीखने की जरूरत है कि हर किसी को अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना दिल देना जरूरी नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप लोगों को क्लियरली देखना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको यूज करने की पावर भी खो बैठेंगे, और फिर आप रियलाइज करोगे कि सबको खुश करने की कभी भी कोई जरूरत ही नहीं। जो सच में आपको वैल्यू करते हैं वो आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हैं। आई होप दिस हेल्प्स। और अगर आप इस तरह से हमें लिखना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए 9151893 पर या फिर listener@radiomasti.com.sg पर। फिलहाल के लिए चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, इस समय मेरी बारी आ चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं हमारे डियर मस्ती दिल से शो में एक नहीं दो नहीं तीन तीन जॉक्स एट योर सर्विस। डियर मस्ती दिल से, तो चलिए मेरी चिट्ठी जो है बड़ी ही खास है। मैं हमेशा ही हर चिट्ठी के लिए बोलती हूँ ये बात, लेकिन आज तो वाकई ये चिट्ठी दिल को बहुत बहुत करीब से लग गई है। हाय डियर मस्ती दिल से, माय ब्रदर एंड आई बोथ लिव ओवरसीज अपनी फैमिलीज के साथ में। आवर फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर एंड सिंस देन लाइफ हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर आवर मदर। कुछ समय के लिए वो मेरे भाई के पास यूके चली गई, बट अनफॉर्चुनेटली शी सफर्ड एन इंजरी देयर एंड नेवर रियली सेटल्ड इनटू लाइफ अब्रॉड। शी मिस्ड इंडिया, हर रूटीन, हर सराउंडिंग्स एंड इवेंचुअली डिसाइडेड टू रिटर्न होम। उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जब से वापस आई हैं वी हैव डन एवरीथिंग वी कैन थिंक ऑफ। उनके पास दो हेल्पर्स हैं, पूरे दिन पूरी रात माय ब्रदर एंड आई कॉल हर एवरी सिंगल डे विदाउट फेल। वन ऑफ अस और आर फैमिली मेंबर्स विजिट्स एवरी फ्यू मंथ्स। फाइनेंशियली वी इंश्योर शी हैज एवरीथिंग शी नीड्स। द प्रॉब्लम इज दैट शी सीम्स टू बी बिकमिंग मोर विदड्रॉन, अनहैप्पी, इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू मैनेज। रिसेंटली उन्होंने खाना भी कम कर दिया है। इनफैक्ट कभी कभी शी टोटली रिफ्यूजेस टू ईट। एवरी सजेशन इज मेट विद रेजिस्टेंस। एवरी सोल्यूशन सीम्स टू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। What hurts the most is that several of our own siblings, her own siblings, live nearby, yet very few people actually visit her. Most of the emotional responsibility falls on us, even though we are thousands of kilometers away. We feel trapped. I cannot simply leave my job and move back to India. My own family depends on me. At the same time, I feel guilty every day, wondering whether I'm failing my mother. And before anyone says just talk to her, we have repeatedly for months. She refuses help, rejects suggestions, and has become extremely unreasonable. What do children do when they genuinely want to help a parent, but nothing they do seems to be enough? I can actually understand exactly aapka ek ek word. थैंक यू सो मच, आपने ये बात लिखी है क्योंकि मेरी खुद की जान पहचान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वेल, नॉट एवरी मदर और एवरी पेरेंट कुड बी एज चैलेंजिंग टू मैनेज जैसे कि आपने इस टाइम मैंने मेंशन किया है, लेकिन डेफिनेटली हर किसी का अपना अपना एक चैलेंज चल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके लेट्स ट्राई एंड लुक इनटू योर इश्यू एंड योर लेटर, क्योंकि आई एम श्योर कहीं ना कहीं हम जब बात करेंगे तो आपको शायद कुछ तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये करके देखता हूँ। स्टे ट्यून्ड,
1: वी आर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड बॉलीवुड स्टाइल एनीवेयर एनीटाइम।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
3: 3, 2, 1।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

वेलकम बैक। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है आपका शो, नो फिल्टर्स नो जजमेंट जस्ट योर लेटर्स, डियर मस्ती दिल से। और मैं रेणुका आपके साथ। पढ़ी जा रही हैं आप ही की चिट्ठियाँ, जी हाँ, और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी बात को समझें। और कहीं ना कहीं जहाँ आप थोड़े से शायद स्टक हो गए हैं अपने माइंड में, मेंटल ब्लॉक सा हो गया है आपके पास, तो हो सकता है कोई ना कोई मिलके रास्ता निकाल पाए आपकी परेशानी का। सो वेल, कुछ समय पहले, इस ब्रेक से पहले हमने बात करी थी अबाउट दिस लेटर फ्रॉम अ सन हु लिव्स ओवरसीज, हिज ब्रदर लिव्स ओवरसीज एंड द मदर इज गेटिंग इंक्रीजिंगली मोर चैलेंजिंग टू मैनेज। वो इंडिया में है और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ऑल्दो उनकी बातों से लग रहा है देव डन एब्सोल्युटली एवरीथिंग टू मेक श्योर कि इनके फादर के जाने के बाद में इनकी माँ की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल बेहतरीन हर तरह से बनाई जाए। Well, dear writer, this letter will resonate with many listeners. जैसा मैंने कहा, क्योंकि ज़्यादा families जो हैं आज के दिन में across countries और continents रह रही हैं, the first thing I want to say to you is, please stop carrying the belief that you are not doing enough. आप और अपने आपके जो भाई हैं जो रोज मम्मी को फोन करते हैं, आपने उनके केयर के लिए 24/7 हेल्पर्स अरेंज करे हैं, यू विजिट रेगुलरली, यू आर फाइनेंशियली सपोर्टिंग हर, ये एक्शंस जो है ना, ये अनकेयरिंग बच्चों के एक्शंस नहीं होते। पर कभी कभी आफ्टर लूजिंग अ स्पाउस, एक एल्डरली पेरेंट जो है ना, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, या कह लीजिए वो ग्रीफ है, लोनलीनेस है, लॉस ऑफ पर्पस है, एंड द फीलिंग दैट लाइफ हैज चेंज्ड फॉरएवर। अनफॉर्चुनेटली कोई भी हेल्पर्स, पैसा, फोन कॉल्स उसको फुली रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कंपेनियनशिप और इमोशनल कनेक्शन को कुछ भी जिंदगी में रिप्लेस नहीं कर सकता। पर अब जब शी हैज स्टॉप्ड ईटिंग और रिड्यूसिंग दैट और नॉट गेटिंग ऑफ हर बेड, विड्रॉइंग फ्रॉम लाइफ और बिकमिंग इंक्रीजिंगली नेगेटिव, स्पेशली जब उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो शायद सिर्फ वो स्टबर्ननेस नहीं है, इट कुड बी डिप्रेशन, अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ और इवन एन एज रिलेटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट रिक्वायर्स प्रोफेशनल असेसमेंट। इसीलिए ये मत पूछिए कि हम उसे कन्विंस कैसे करें, ये पूछिए डज शी नीड प्रोफेशनल सपोर्ट, जेराइट्रिक स्पेशलिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या मे बी अ डॉक्टर, जो फैमिली मेंबर्स नहीं देख सकते, शायद वो देख के बता दें। सो स्टॉप ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस अलोन। सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ओल्ड फ्रेंड्स, रिलीजियस ग्रुप्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर सिटीजन ग्रुप्स अवेलेबल हों आसपास, तो दिस इज द टाइम टू एक्टिवेट एवरी पॉसिबल सपोर्ट नेटवर्क। एक मीनिंगफुल वीकली विजिटर, दैट कैन मेक अ डिफरेंस। एंड फाइनली देयर कम्स अ पॉइंट जब एडल्ट चिल्ड्रन मस्ट एक्सेप्ट कि वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप प्रोवाइड कर सकते हैं केयर, यू कैन प्रोवाइड सपोर्ट, लव, अपॉर्चुनिटीज, बट आप दूसरे इंसान की जिंदगी नहीं जी सकते उनके लिए। समटाइम्स द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ लव इज नोइंग यू हैव डन योर बेस्ट इवन वेन द आउटकम इज नॉट परफेक्ट। So to every son and daughter listening from overseas today, caring for aging parents from a distance is one of the hardest emotional journeys there is. Be compassionate towards them, but apni taraf bhi. Ye hai Dear Masti Dil Se, jahan kabhi kabhi heaviest burdens bhi bade quietly carry kiye jaate hain. हमसे शेयर कीजिए info@radiomasti.com.sg पर, या बेहतर है 9151896 पर।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: ऐसा होता है, आपको जो करने को मना किया जाए आपका दिल वही करने को कहता है। दिल क्या, दिमाग का भी ऐसा ही है। चलिए ऑन दिस नोट कि नेगेटिव थॉट्स पर कैसे अपना कमांड रखें, मैं आरजे पर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। हम पूरी दुनिया से नहीं जीत सकते अगर हम अपने थॉट्स से नहीं जीत पा रहे हैं। जो हमें नहीं करना है मतलब नहीं करना है, कुछ भी हो जाए बस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि यार मेरा मेरे दिल पर और दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। चलिए डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे हाथों में जो लेटर आया है उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है मुझे। हाँ, जिन्होंने ये लेटर भेजा है उन्होंने लिखा है कि हाय डियर मस्ती दिल से, मुझे ना एक थोड़ी सी गलत आदत लग चुकी है। मैं अपनी लाइफ में अकेली हूँ, लेकिन मैं ना हमेशा मैरिड मेल मेंबर्स के ऊपर लट्टू हो जाती हूँ। मतलब मुझे अट्रैक्शन हमेशा मैरिड लड़कों की तरफ ही फील होता है। सो मुझे क्या करना चाहिए? आपको खुद भी पता है कि आप थोड़ा गलत सोच रही हैं, है ना? तो एथिकली गलत सोचना गलत नहीं है, एथिकली अपनी सोच पर कंट्रोल ना रखना थोड़ा सा गलत हो सकता है। आज शायद आप मैरिड लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, इसलिए आपको अपना रियल पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, राइट? कल आप शायद कुछ गलत कामों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगी और वो आप करती रहोगी तो आपको लगेगा कि यार अब इन चीजों से कैसे निकलूं। तो ये एक हैबिट का पार्ट बन सकता है कि जो चीज नहीं करनी है आपका दिल वही करने को बार बार कहता है। तो आपको खुद को एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपने माइंड को, अपने दिल को एक कमांड देना पड़ेगा, और आपको अपने कुछ गाइडलाइंस, अपनी

रूल्स बनाने होंगे ताकि आप अपने सोच विचार अपना एक जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना वो उसी के अराउंड रखो, ठीक है। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट सो इजीली। आप जैसे ही अपने माइंड को अपने दिल को कमांड देना शुरू करोगे ना तो विद इन 3 to 6 months आप शायद इन सारी चीजों से निकलकर एक अलग डायरेक्शन में निकल पाओ। एनीवेज आपकी डायरेक्शन

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ये वन साइडेड मोहब्बत ना टू साइडेड मोहब्बत से ज्यादा दुखदायी होती है, लेकिन जब प्यार इंसान से नहीं मशीन से हो जाए तो क्या करे। आ आ आ, ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। यू नो व्हाट, टेक्नोलॉजी शायद हमारे भले के लिए बनाई गई है, हमारा काम आसान करने के लिए बनाई गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक फ्रेंडली होने से ज्यादा हम टेक के दुश्मन बनते जा रहे हैं, है ना। एंड अभी जिनका लेटर मेरे हाथों में आया है उन्होंने पता है क्या लिखा है। डियर मस्ती दिल से, हाय, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे ना AI प्लेटफॉर्म पर अपने दिल की बातें लिख लिख कर बताने की आदत हो गई है। मैं AI से बातें करना शुरू कर चुका हूँ और मुझे पता है ये एक मशीन है, पर फिर भी मेरा दिल मानने को ये राजी नहीं है। आ आ आ आ, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, लेकिन क्या आपकी लाइफ में अच्छे वाले दोस्त हैं? हाँ, मतलब वो दोस्त जिनसे कोई भी प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में? नहीं, अगर वो नहीं है ना तो आप अपनी बातें ऐसे ही कहीं लिख लिख कर या चलते फिरते AI टूल्स को और ना जाने किन अनजान लोगों को या कौन सी थेरेपीज में बताना शुरू कर दोगे। हाँ, तो आप पहले अपनी लाइफ में जेन्युइन फ्रेंड्स लेकर आइए जिनके प्रति आपका कोई और इंटेंशन ना हो, और जिस तरह से एक रियल मैन टू मैन बातें होती है ना वो बताना शुरू कीजिए। हेसिटेट मत कीजिए, कोई आपको कितना ही गलत समझे आपके मन में जो चल रहा है वो बताइए, एक्सप्रेस कीजिए। मशीन से एक तरफा बातें कर यानी AI प्लेटफॉर्म से एक तरफा बातें कर आप कितने पानी में हैं आप कभी नहीं जानने वाले। ओके, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस टुडे। एनीवेज, मैंने स्टार्ट कर दिया है इस गाने की तरह सोचना।

0: मस्ती दिल से शो पर
1: गाने और बातें लगातार कर रहे हैं. डोंट गो एनीवेयर.
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस. एनीटाइम एनीवेयर.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। स्वागत आपका एक बार और, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। जी बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं हम अनजाने इंसानों की। यहाँ पर अंतरा है, आरजे नूपुर है और साथ ही साथ में मैं रेणुका आपके साथ हूँ, आप ही की चिट्ठियाँ पढ़ते हुए एंड होपफुली आपको थोड़ा सा एक रास्ता दिखाते हुए। Our next letter is from a lady who is, well, I would say very strong to really look up to us for her problem and sharing what she's going through. Hi, dear Masti, Dil Se, I'm writing about something many women go through but very few openly talk about. मैं अपने अर्ली 50s में हूँ एंड आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज। बिफोर दिस फेज आई कंसिडर्ड माई सेल्फ अ फेयरली काम बैलेंस्ड पॉजिटिव पर्सन, बट लेटली आई बेयरली रिकग्नाइज माई सेल्फ। I find myself getting irritated over small things. I snap at my husband, become impatient with people around me, and then later feel guilty about it. Sometimes I feel like I'm constantly on the edge, even when nothing is actually wrong. मेरी नींद बहुत ही खराब हो चुकी है। मैं आधी आधी रात को उठ के बैठ जाती हूँ, कभी इधर कभी उधर मुड़ती हूँ, एंड देन स्पेंड द नेक्स्ट डे फीलिंग एग्जॉस्टेड। देर आर डेज व्हेन आई डोंट इवन फील मोटिवेटेड टू वर्क और सोशलाइज। आई जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन। Another issue is with that my interest in intimacy has reduced significantly. My husband tries to be understanding, but I don't think he truly gets what I'm going through. Sometimes he thinks I'm overreacting, and that only makes me feel more alone. The hardest part is that everyone expects me to continue being the same person I always was. Lekin andar hi andar mujhe aisa lag raha hai meri body, emotions, energy levels and even confidence are changing. Am I becoming difficult? Is this normal? How do I stop menopause from affecting my marriage, my work and my mental health? Well, yet again, for the sake of repeating myself, I know you are not alone. तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और वापस आके बात करते हैं आपके इस चैलेंज के बारे में, जो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि बहुत सारी और भी हमारी लिसनर्स जो हैं उनको इंटरेस्ट होगा सुनने में। स्टे ट्यून्ड।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका आपके साथ है और आप जानते हैं कि आपका ये खास शो है डियर मस्ती दिल से। डियर मस्ती दिल से, आप ही की चिट्ठियाँ, आप ही के विचार, समटाइम्स आपकी ऐसी ऐसी बातें जो हमें और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करती हैं। कहीं ना कहीं एक एडवाइस, एक डायरेक्शन, एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि हम आपकी चिट्ठियों को यहाँ पर किसी और तक पहुँचा सकें और शायद उनकी किसी प्रॉब्लम को, उनकी किसी परेशानी को सॉल्व कर सकें। First of all, to the listener who just wrote this letter about what she is going through, जी हाँ, menopause उन्होंने खुद ही identify करके बोला है, लेकिन उनको अपनी body क्या बन गई है वो ही समझ में नहीं आ रहा, ना mental state समझ आ रहा है, ना उनकी body का reaction समझ आ रहा है, ना mood समझ आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। Well, I can tell you, I guarantee there are many women listening right now who are silently nodding their heads as well. Menopause, one of the most common life transitions women experience, yet it remains one of the least openly discussed. And the first thing I want to say is this, what you are experiencing, my dear, is not unusual. Neend ke changes, mood changes, energy, concentration, emotions aur intimacy, ye sari ki sari cheeze bahut si aurte report karti hain during this phase of life. The problem is that menopause affects not just the body but relationships as well. Partners often see the irritation or withdrawal, but unko samajh mein nahi aata ye physical emotional changes kya ho rahe hain, chal kya raha hai underneath. So instead of trying to push through silently, शायद आपको अपने पार्टनर को एक कॉन्वर्सेशन में लाना जरूरी है, आर्ग्यूमेंट के दौरान नहीं, नॉट ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट डे, नॉट आफ्टर यूर अ टायर्ड पर्सन ड्यूरिंग द डे, बट ड्यूरिंग अ काम मोमेंट, जब आप एक्सप्लेन कर सकें दैट इट इजंट अबाउट नॉट लविंग योर पार्टनर, इट्स अबाउट नेविगेटिंग अ मेजर लाइफ ट्रांजिशन टुगेदर। सेकेंडली, प्लीज डोंट सफर अलोन, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। मेनी वुमेन अज्यूम दे सिंपली हैव टू टॉलरेट एवरी सिम्टम, बट देयर मे बी लाइफस्टाइल चेंजेस, थेरेपीज, ट्रीटमेंट्स, सपोर्ट ऑप्शंस भी होते हैं अवेलेबल। एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, गिव योरसेल्फ सम ग्रेस। आपने सालों बिता दिए घर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, फैमिली, हर चीज को अच्छे से यू हैव टेकन केयर ऑफ, दिस इज द टाइम व्हेन यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट? And believe me, menopause is not the end of who you are. It's a transition into a new chapter. And like every major transition in life, it requires patience, understanding and support. तो अगर आप इमोशनल हैं, टायर्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, रेडियो मस्ती 24/7 तो सुनते ही रहिए, लेकिन इतना जान जाइए, यू आर नॉट फॉलिंग, यू आर अडैप्टिंग। एंड समटाइम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू इज आस्क फॉर हेल्प इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग सब ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन, आस्क्ड फॉर हेल्प। तो हम हैं यहाँ पर, लिखते रहिए हमें, हमारे से जुड़े रहिए, क्योंकि ये है डियर मस्ती दिल से, वेयर वी रिमाइंड ईच अदर दैट सम स्ट्रगल्स आर शेयर्ड बाय मोर पीपल Then we realize.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: पर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
6: थोड़ी देर पहले ना मैं रेणुका के ये लेटर सुन रही थी और एक बात ना बार बार दिमाग में आ रही थी कि अगर हम सच में अपने आसपास देखें ना तो कितनी बातें हैं जो हम कह के भी नहीं कह पाते हैं. इट वॉज अबाउट मेनोपॉज एंड कितनी फीलिंग्स हैं जो हम बस अंदर ही अंदर रख लेते हैं. नहीं, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, कभी खुद वल्नरेबल नहीं दिखना चाहते और कभी बस ये डर होता है कि सामने वाला समझेगा भी या नहीं. और शायद इसी सवाल को सोचते सोचते हमने ये शो जो है बिल्कुल बना दिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं अंतरा यहां पर वापस से आपके साथ. और ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर आप बिना किसी जजमेंट के अपनी बात जो है जजमेंट के डर से अगर आप हेजिटेट करते हैं तो बिल्कुल आप यहां पे बेफिक्र होकर अपनी बात कह सकते हैं. और इवन आपने कभी हमें लेटर अगर नहीं लिखा हुआ है, मुझे यकीन है ये जो आज के और इससे पहले के जितने भी लेटर्स हैं कहीं ना कहीं आपने किसी सिचुएशन के साथ तो जरूर रिलेट किया होगा, किसी इमोशन को जरूर महसूस किया होगा, किसी स्ट्रगल में आपने यू नो हल्का सा अपना फेंट सा जो है झलक भी देखी हो सकती है. और अगर ऐसा हुआ है तो बस रिमेम्बर इट्स ओके टू फील व्हाट यू फील, ओके, एंड उसे शेयर करना भी बिल्कुल ओके है. हम यहाँ पे आपको सुनने के लिए ही बिल्कुल बैठे हुए हैं. और इसी बात से मुझे याद आया कि आज शो की शुरुआत में मेरे पास एक लेटर आया था, एक लिसनर जो सबको खुश रखना चाहता था, सबके लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन फिर उसे पता चला कि कुछ लोग जो हैं उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे हैं. और उस लेटर ने मुझे आज का सवाल दिया जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. अगर आपको पता चले कि कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सामने वो आपसे बहुत अच्छे से मिलता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसको कन्फ्रंट करेंगे, क्या आप या फिर चुपचाप डिस्टेंस बना लेंगे? या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि और आपने उसे किसी ऐसे तरीके से हैंडल किया हो जिसने आपको काफी पीस ऑफ माइंड दिया? हम सच में आपकी स्टोरीज और पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल सुनना चाहेंगे. सो टेल मी अबाउट दिस 9158963 पर. एंड ज़रूर बताइए कि आप ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हो जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं. योर थॉट्स, योर एक्सपीरियंसेस, योर विजडम इज ऑल वेलकम एंड वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू. 9151-8963 के दरवाजे बिल्कुल आपके लिए खुले हुए हैं. यह है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ, और बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ओवर हियर सीधा बढ़ते हैं हमारे अगले लेटर की ओर और देखते हैं कि हमारे डियर लिसनर ने हमें क्या लिखकर भेजा है। सो डियर मस्ती, माय फ्रेंड टोल्ड मी वन डे दैट इफ यू वांट टू मेक थिंग्स हैपन, आस्क द यूनिवर्स फॉर इट, मैनिफेस्ट इट एंड इट विल कम टू यू। I am embarrassed and awkward yet writing this, but I did ask the universe for good scores in studies, that internship I interviewed for, and a lot of other things, but nothing happened. How did it work for my friend and not for me? Am I doing something wrong? Did I get scammed? Judge me all you want, but tell me what you think about it, okay? Okay. Definitely. So my dear listener, सबसे पहले तो no judgment at all. In fact, I think a lot more people have had this thought than some of, like, I'm proud of you that you openly admitted it as well. लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि life आपके साथ lately कैसी रही है? या आपने बहुत मेहनत की है हाल ही में और result wise वैसा नहीं आया जैसे आपने सोचा था? क्या आपने wait किया और opportunities आपके पास नहीं आई? क्योंकि कभी कभी लाइफ में जब हमारे हिसाब से नहीं चीजें चलती हैं तो हम नेचुरली उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमें थोड़ी सी भी होप देती है। और होप में कोई बुराई नहीं है। मुझे मेरे डैड हमेशा एक बात कहते थे एंड आई कंप्लीटली अग्री विद हिम। मैं लाइक लाइफ के प्रिंसिपल्स में दैट इज देयर डेफिनेटली, दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। और आज भी मुझे लगता है कि उस लाइन में बहुत सच्चाई है। वैसे अगर आपने कभी ये मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी है, और नहीं भी देखी है तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो आई वुड सजेस्ट एंड रेकमेंड कि उसको वापस से देखिए। उस फिल्म का एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग है, लेट मी प्ले दैट फॉर यू फर्स्ट।
1: वन डे अ मैन वाज ड्राउनिंग इन द वाटर एंड अ बुक केम बाय एंड सेड यू नीड एनी हेल्प, ही सेड नो थैंक यू, गॉड विल सेव मी। एंड अनदर बुक केम बाय सेड यू नीड एनी हेल्प, ही सेड नो थैंक यू, गॉड विल सेव मी। Then he drowned and went to heaven. And he said, God, why didn't you save me? And God said, I sent you two big boats, you know me. Do you like it?
2: Yes.
0: समझ में आया? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैनिफेस्टेशन सही है या गलत है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि सिर्फ यूनिवर्स को ऑर्डर देने से चीजें मैजिकली डिलीवर नहीं हो जाती है। मैनिफेस्टेशन अगर किसी काम की है तो शायद इसलिए कि वो आपको अपना गोल क्लियरली देखना सिखाती है, लेकिन उस गोल तक चलकर तो आपको ही जाना पड़ेगा। हम बहुत बार परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का ना वेट करते रहते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, परफेक्ट कंडीशंस, और उस वेट में कभी कभी ना अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही निकल जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। सी, फियर इज नॉर्मल, एप्रिहेंशन इज ऑल्सो नॉर्मल, फेथ रखना भी बहुत अच्छी बात है, चाहे भगवान में हो, यूनिवर्स में हो, बट खुद में जरूर होना।

0: चाहिए, लेकिन फेथ के साथ एफर्ट भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, एक्शन भी जरूरी है और लीप ऑफ फेथ भी जरूरी है। मैं हमेशा एक बात मानती हूँ दैट फॉर एनीथिंग टू वर्क आउट यू हैव टू वर्क फॉर इट, और काफी बार बहुत हार्ड वर्क के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिलता है लेकिन वो मेहनत जो है कभी वेस्ट नहीं जाती, वो आपको बेटर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर बनाती है। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, और अगर कभी फिर ऐसे थॉट्स आए तो हमें लिखिए या अपने पेरेंट्स, टीचर्स या किसी ट्रस्टेड अडल्ट से जो है बात कीजिए। हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं होती, कभी कभी वही सबसे ज्यादा करेजियस स्टेप होता है। सो होप दिस हेल्प्स डियर लिसनर। आप सुन रहे हैं डियर मस्ती एक दिल से।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: ऑलराइट, सो वेल, बहुत बहुत वापस से स्वागत है आपका ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं अंशरा यहाँ पर आपके साथ चल रहा है डियर बस्ती दिल से, और बस इसी बात के साथ इस सेफ स्पेस पे कोई और है जो अपना दिल खोल के हमारे सामने रखना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। सो हैवी को, डियर मस्ती, रिसेंटली आई वॉज ऑन अ डेट एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, सॉर्ट ऑफ अ ब्लाइंड डेट अरेंज्ड बाय आवर फ्रेंड्स। व्हाइल लीविंग द रेस्टोरेंट आफ्टर हैविंग अ गुड टाइम, व्हेन आई आस्क्ड हर टू स्प्लिट द बिल इन हाफ, शी लॉस्ट हर कूल एंड जज्ड मी फॉर नॉट बीइंग अ जेंटलमैन। मे आई आस्क What do girls want? ये तो सभी का सवाल है। You want equality, but only where you think it is required. Okay. Isn't it supposed to be everywhere? We both are college students. Was I wrong to ask her to do so? I am a little frustrated with this, and I can actually आपका letter में जैसे जैसे पढ़ रही थी ना, so I can just completely get like. You are frustrated. So, let me get on to it. Okay, my dear listener. सबसे पहले मुझे लगता है कि आपका frustration बिल्कुल लेकर कम है और उस judgment को लेकर ज्यादा है, क्योंकि जब कोई हमें एक ही incident पर judge कर देता है तो naturally, you know, बुरा लगता है। अब आपका सवाल कि क्या आप गलत थे? Honestly, नहीं। क्या वो गलत थी? जरूरी नहीं। और शायद यहीं से बात काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सी, डेटिंग में बहुत सारी चीजें राइट और रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस की कैटेगरी में आती हैं। हो सकता है आपके लिए स्प्लिटिंग द बिल कंप्लीटली नॉर्मल हो, स्पेशली जब दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, राइट? और हो सकता है उसके लिए फर्स्ट डेट पर बिल पे करना एक जेस्चर हो जो वो अप्रिशिएट करती हो। प्रॉब्लम बिल नहीं है, प्रॉब्लम इज कि आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो डिफरेंट थी, और किसी ने पहले उसके बारे में बात ही नहीं की। अब जो लाइन आपने बोली, What do girls want? Out of frustration थी, I know. मैं उसे थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है और सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते हैं इन दैट केस। कुछ लड़कियां जो है बिल स्प्लिट करना प्रेफर करती हैं, कुछ ऑल्टरनेट पेइंग जो है वो पसंद करती हैं, कुछ अप्रिशिएट करती है जब सामने वाला पे करे, और कुछ इंसिस्ट करती है कि वो खुद पे करे पूरा का पूरा। हर इंसान अलग है, और डेटिंग का एक बड़ा पार्ट यही डिस्कवर करना होता है कि सामने वाले की वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस आपसे मैच करती है या नहीं। And my dear listener, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट के बाद आप दोनों एक दूसरे को समझने की जगह जज करने लगे हैं तो इट वॉज नेवर द बिल विच वॉज द प्रॉब्लम। कंपैटिबिलिटी भी एक एस्पेक्ट है और उसमें कोई बुराई नहीं है। हर डेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होती है, हर कनेक्शन फ्यूचर तक नहीं जाता है, एंड ऑनेस्टली ये अच्छी बात है। इसी प्रोसेस में तो हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह के इंसान के साथ कंफर्टेबल है, राइट? तो इस इंसिडेंट को रिजेक्शन या फेलियर मत समझिए। आपने अपने बारे में कुछ सीखा और शायद उसने भी अपने बारे में कुछ सीखा, एंड ट्रस्ट मी, जब आपको वो राइट पर्सन मिलेगा ना, तो बिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो कॉन्वर्सेशन होगी। कौन पे कर रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं या नहीं। और वैसे भी आप ना काफी यंग हो, ये मुझे ऐसा मेरे को लगा आप ये चिट्ठी पढ़ के, बिकॉज यू आर इन कॉलेज, और मुझे लगता है कि यूथ की यही सबसे ब्यूटीफुल बात होती है। आपको अभी बहुत लोग मिलने हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस होने हैं और बहुत कुछ सीखना है, तो एक ऑकवर्ड डेट को लाइफ का फाइनल वर्डिक्ट मत बनाइए। स्माइल करिए, कुछ सीखिए, अगली कॉफी डेट के लिए रेडी रहिए। हु नोस, द नेक्स्ट स्टोरी माइट बी अ लॉट लॉट बेटर, राइट? इसने देखा है। होप दिस हेल्प्स। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, यह है दिया मस्ती दिल से।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: सिंगापुर, बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
5: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
6: You know what? हमारी गाड़ी में भी एक स्पेयर टायर होता है कि जब गाड़ी जो है ना थोड़ी सी बिगड़ जाए, किसी एक्स्ट्रा टायर की जरूरत हो, उस दिन हम उसे स्टेपनी की तरह लगाए। तो लाइफ में भी ना हर वक्त एक तीसरा, चौथा, पांचवा टायर लेके मत चलिए। जब बहुत जरूरत हो ना तो उस टायर को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि वो आपको एक थर्ड ओपिनियन दे पाए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ है एंड डेफिनेटली हम सभी आरजेस कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ की जो गाड़ी है ना, रिलेशनशिप की स्पेशली, वो एकदम सीधी ट्रैक पर चलती जाए। तो अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उससे मुझे कुछ नजर आ रहा है कि भाई दिक्कत तो है, बिल्कुल दिक्कत है। और जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उन्होंने लिखा है कि मेरी पार्टनर वैसे तो बहुत अच्छी है लेकिन वो हर फैसले में अपनी फैमिली का ओपिनियन जरूर लेती है और समटाइम्स क्लैशेस बढ़ जाते हैं कि हम दोनों के बीच की बातों में फैमिली के डिसीजन क्यों निकल कर आ रहे हैं और ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज वो लोग इतने क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं कि उनके लिए मैं कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकता। आपसे कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी पार्टनर से डिस्कस कीजिए कि अगर यही चीज़ आप करने लगो, आप बातों बातों में अपने फैमिली मेम्बर्स से सारे डिसीजंस, सारे जो राइट्स हैं वो उनको देने लगो तो उनको कैसा लगेगा। बट हाँ, आप दोनों से भी जिन बातों का सल्यूशन ना निकले तब घर के बड़ों की, तब घर के फैमिली मेम्बर्स की एक एडवाइस होनी बहुत ज़रूरी है और वो भी बहुत कैजुअली कि आप सबको डिनर पे लेके गए और वहाँ आपने एक सवाल थ्रो किया और उनकी तरफ से एक जवाब निकल कर आया। तो मेक इट थोड़ा सा लाइट मोड है ना, हर बार आदत बन जाना और आपका मन में ये रख जाना कि ये तो गलत हो रहा है, ये भी गलत है। आप उनसे डिस्कस कीजिए कि ऐसे थर्ड एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। पॉलिटिक्स में भी इसमें बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। रिश्ता पुराना ही सही लेकिन संभाल।

0: क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल चुके हो? आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज, आपको बस और बस काम ही नजर आता है, हाँ? पुरानी लाइफ को याद कीजिए, पुराने नंबर्स को कॉल बैक कीजिए। सो हेलो, हाय डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुरा आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अपनी वर्किंग लाइफ को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम अपने स्कूल, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को पीछे भूल जाते हैं। कई बार वो हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे टेक्स्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम है मजाल कि हम उन्हें कॉल बैक कर दें, हम उनके सवाल के जवाब दे दें, हम उन्हें मैसेज बैक कर दें? नहीं। लेकिन अचानक से आप अकेला फील करते हैं, उस दिन आपको वो पुराने सारे दिन याद आते हैं और होती है मन में एक रिग्रेट कि मैंने अपने दोस्तों को पीछे क्यों छोड़ दिया। चलिए ठीक है, वो कहते हैं ना, सही वक्त आज से ज्यादा सही कोई और हो ही नहीं सकता। आप सच में बैक ऑफ द माइंड अगर किसी अपने पुराने से पुराने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा मिस करते हैं और आप उनसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जुड़े हुए हैं या आपके पास उनका नंबर है, तो उन्हें पिंग कीजिए, उन्हें मैसेज कीजिए और कुछ पुराने मोमेंट्स को चेरिश कीजिए, वरना ये काम तो कभी खत्म नहीं होने वाला। ना ना ना ना ना ना ना। सो मेरी एडवाइस है कि आप चाहे उम्र में जितने बड़े हो जाए, दिल को बच्चा रखिए।
1: कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है।
0: बिल्कुल, यादें तो साथ हैं लेकिन ताजे गाने भी डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ हैं।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: Dear Musti, Dil se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai. And with that, we come to the end of another episode of Dear Musti, Dil se. No filters, no judgment, just your letters. Dear Musti, Dil se. All right, आज का शो भी what a journey, right? हमने बात करी about the challenges of menopause, how deeply it can affect emotions, relationships, sleep, confidence and self-identity. हमने discuss करे the difficult reality of caring for aging parents from thousands of miles away and the guilt many children carry when they feel they cannot do enough. खास बात यह है कि हम इसे प्रीच नहीं कर रहे हैं, ये वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में आप ही लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, आप ही लोगों के चैलेंजेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं और फिर हम इकट्ठा मिलके एक डायरेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं. वी टच्ड ऑन फैमिली इंटरफेरेंस इन रिलेशनशिप्स, अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन हु इज ऑलरेडी कमिटेड एल्सवेयर एंड द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइव्स. अलग अलग सवाल, अलग अलग सिचुएशंस एंड डिफरेंट पीपल एज वेल, येट ऑल कनेक्टेड बाय वन सिंपल ट्रूथ, लाइफ रेयरली कम्स विद अ मैनुअल. और आज ये शो इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम सबके पास सारे जवाब नहीं हैं, बट समटाइम्स वी जस्ट नीड समवन टू हियर अस आउट, क्योंकि किसी और का पर्सपेक्टिव भी बहुत मायने रखता है और हमारी अपनी सिचुएशन को देखने में कितनी मदद करता है, जस्ट इन अ डिफरेंट वे. One of the most heartening things for us recently, by the way guys, has been that the messages we've been receiving from listeners, जिन्होंने वाकई हमारे कुछ suggestions को try किया है जो हमने discuss करे on the show, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि difficult conversations, healthier boundaries, reconnection with family members, कभी कभी मतलब एक अलग नजरिया मिलने की वजह से आपने कहा है कि आपको positive results मिल रहे हैं. So please keep those updates coming because we don't want credit. It's just that आपका जब feedback मिलता है ना, तो हमें एक अलग ही direction मिलती है. हमें भी समझ आता है कि क्या resonate हो रहा है, what helps and what where we can continue to help and serve the community better. और हमें भी तो motivation चाहिए ना भाई. So if there's anything up your mind guys, a question you can't answer, ask elsewhere, a challenge you are facing or even a success story that began with a conversation here, please write to us because sometimes ek chitti, ji haan, it can help thousands of listeners feel less alone. When we meet again next Tuesday, take care of your mind, your heart, your relationships and most importantly, be a little kinder to yourself, okay? This is Renuka signing off from Dear Musti Dil Se, only on Radio Musti 24/7. और ये एक ऐसा शो है जहां हर कहानी मैटर करती है.

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।
1: Valentine's Day.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

खिली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

दिल की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: 10, 11 और फिर 12, 12 मई, जी हाँ बिल्कुल जा चुकी है और 12 जून आ चुकी है। कुछ भी, रेडियो मस्ती 24/7 पर, ये है आपका और हमारा सबसे फेवरेट शो। आप कहे ना कहे हम तो बोल ही देंगे।
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस।
0: वाह वाह वाह, सुबह सुबह ज्ञान बांटते हुए ये आदमी और वो आवाजें हमारी रेडियो मस्ती 24/7 पर। स्वागत स्वागत।
4: इन्होंने देखा सामने कुछ, एंड इट इज लाइक सच अ फ्राइडे थिंग, ओके, वी जस्ट यहाँ पे वी अराइव एंड वी स्टार्ट टॉकिंग एंड समटाइम्स इट एक्चुअली डजंट मेक सेंस टू अस आल्सो कि हम बात क्या कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वी विल गेट द हैंग ऑफ इट।
0: बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो भाई ऐसा है कि जैसा हमारा सुबह सुबह गाना चला, सोचा है किसी ने नहीं सोचा, इस शो पर सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस शो पर हम जो बातें बताते हैं वो आप उस टाइम सोच नहीं सकते और बाद में सोचते रहते हैं, क्यों भाई, है कि नहीं अंतरा?
4: True, वैसी सारी अतरंगी खबरें इकट्ठा करके हम लोग वापस से यहाँ पर आ चुके हैं, सो ब्रेस योरसेल्फ।
0: बिल्कुल ब्रेस योरसेल्फ्स, क्योंकि आज की खबरें भी बहुत ज्यादा ताजा ताजा और साथ ही साथ में हैरान करने वाली होंगी। दिस इज मस्ती मैडनेस, 12 जून वाला मस्ती मैडनेस, और अगर आप ऑनकोर सुन रहे हैं तो 5:00 कुछ ही मिनट हुए हैं और आप 13 जून है ना, है कि नहीं, सैटरडे ऑनकोर, हाँ ओके
4: बिल्कुल मिल गए इनको सारे ब्राउनी पॉइंट
0: सारे।
5: आज की रात मजा हुस्न का,
0: तो आज की रात मजा हुस्न का लेने को तैयार हो जाइए, वीकेंड आने वाला है।
5: आज की रात
0: दिस इज मस्ती मैडनेस विद रेणुका एंड अंतरा ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: listen to Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: पाल पोस के किसी को बड़ा करो, लगता है कि अब तो ये इंसान हमारे लिए फेथफुल हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: ऐसा लग रहा है बागवा करती हुई
1: है। सच में तुम सोचो, पुलिस ने, मेक्सिको की बात हो रही है, ब्राजील की बात हो रही है, तो पुलिस ने क्या किया था कि भाई एक जगह से उन्होंने एक पैरट को बचाया था, ठीक है, कहीं पर कोई छापा हुआ मारा, वहां पर ये पैरट बेचारा वहां पकड़ा गया, एक्चुअली ड्रग डीलर्स के पास था ये पैरट, ठीक है, तो इन्होंने कहा चलो अब हम इसको अपने पास ले जाते हैं, इसको ट्रेन करेंगे, यू नो मे बी ही विल टेल अस मोर अबाउट वहां क्या होता था ड्रग डीलर्स के वहां पर, और हम पकड़ पाएंगे, यू नो लाइक दैट। अब हुआ ये, इन्होंने अपने आप पास तो रख लिया, और जब भी ये ड्रग डीलर्स के छापे मारने जाते थे तो इस पैरट को साथ लेके जाते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो पैरट है जिसको इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, वो ऑलरेडी ट्रेंड था पुलिस को देख के चीखने में, पुलिस आ गई, ठीक है। And he used to do that in Portuguese. अब प्रॉब्लम ये है, जितनी बार पुलिस उसको लेके पास में जाए कहीं भी और छापा मारने लगे, ये दूर से चीखने लगे, पुलिस आ गई, ठीक है। अब ना पुलिस इसका क्या, इसका मुंह बंद करे, मतलब करे तो हम क्या करें, ये तो हमारा हो ही ना पाया, हमसे खाता पीता और फिर जाके उनको शोर मचा देता है। चलो फिर भी किसी तरीके से इन्होंने कुछ पकड़ा और पैरट को दोबारा से वापस स्टेशन लाके और उसको क्वेश्चनिंग के लिए रखा। अब अच्छा। अब मैं कहूं कि भाई ह्यूमंस, एनिमल्स, सबका एक बहुत बड़ा राइट होता है, द फिफ्थ अमेंडमेंट राइट, जो कि हम कहते हैं इफ यू प्लीड द फिफ्थ देन द पुलिस कैन नॉट force you to say anything. So parrot का जो lawyer है उसने बोला our parrot would like to plead the fifth. तो अब पुलिस उससे कुछ निकाल भी नहीं पा रही है, मतलब क्या लगा क्यों है टंटा।
3: मैं तो कभी भी सोचते बेचारे पुलिस वालों का, मतलब ठीक है हम लोग ना कभी भी ऐसा एकदम रैंट कर जाते हैं, बट उनका भी सोचना चाहिए, कैसी कैसी चीजों से उनके पाले पड़ते रहते हैं, मतलब आउट ऑफ द ब्लू अब हमें पैरेट से पूछना पड़ेगा कि बता दे भाई।
2: दिस इज समथिंग

0: life.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
2: Check it out.
3: भाई मैं तो मतलब अब तो कॉस्को जाने का कुछ ऐसा मनसा हो रहा है, जहां पर भी हो बाय द वे आपको भी जाना चाहिए, बड़े अच्छे डील्स चल रहे हैं वहां पे।
4: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
5: कॉस्को मतलब याद आया कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन बड़ा ही मजाक उड़ा रहा था कॉस्को का, कहता है कि भैया किसी ने बोला उनका गैराज का दरवाजा खुला अमेरिका में और वहां पर ना मिनरल वाटर के पूरे कार्टन के कार्टन पड़े हुए थे, तो उनको मैंने देख के बोला कि तुमने कॉस्को खुला हुआ है यहीं पर क्या, मतलब क्या है क्या ये, तो वो कहते हैं नहीं नहीं कैलिफोर्निया में ना ड्राउट हो गया था। उसने कहा मुझे समझ आ रहा है क्यों हो गया था, यहाँ पड़ा सारा पानी तो I believe वाकई promotions बड़े solid होते हैं। हाँ तो तुम्हारी क्या खबर है?
3: Like seriously, so Florida की ये बंदी जो है ये Costco में enter की and enter करके इसने जो है कहीं से तो इंतजाम किया कि भाई she is wearing this fake employee का badge and जाके वो जो sample stations होते हैं ना उनमें से एक station पे जाके खड़ी हो गई। अब इसने किया क्या, वही interesting चीज है। She started handing out these small tequila ke samples, condiment ke cups mein sabko. She is working for the store. ठीक है? She paired the drinks iske frozen appetizers ke saath and इसने वहां पे लगा दिया ये दिस इज कम्युनिटी टेस्टिंग एक्सपीरियंस। फिर जब ये पकड़ी गई और पुलिस लेके गई इसको कि तुमने जो है ये सारी चीजें क्यों की, तो कह दी है टू सेलिब्रेट द वीकेंड।
5: इसी बात पर गाना अगला हमारा क्या है, सैटरडे सैटरडे एंड फिर पकड़ी गई अंदर गई
3: पकड़ी गई बट द पीपल जिस दिन ये इसने सारा चीज किया सियापा जो वहां पे उस दिन शॉपिंग करने पहुंचे उनका जब बाद में वो ये कहते हैं कि हमें तो लगा था कि इट वाज अ न्यू मेंबरशिप पर्क, वी वर रियली हैप्पी कि मतलब कॉस्को हैज सॉर्ट समथिंग।
5: दिन में टून करा रहा है सबको शराबे पिला के टू मच।

0: चलो इसी बारे में बात करते हैं। अंतरा रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है गाना, जो कि इस टाइम आप सुन रहे थे 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 एंड व्हेन आई ब्लो अप आई टेल यू
1: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस। एंड व्हेन यू नो रेणुका फॉर अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग टाइम, यू एक्चुअली कैन सी कि बस कब कब अटने वाला है यहाँ पर। एंड या यू काइंड ऑफ या यू जस्ट डोंट वांट टू सी,
0: नो वी डोंट वांट टू सी, बिकॉज़ वो कम होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत ही घटिया होता है। और वो मैं अपने दिमाग के प्रेशर कुकर की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो मतलब बहुत सहता है वो सीटी जो है, और वो जो विसल है वो बड़े टाइम के बाद बजती है, स्टीम इकट्ठा होता है, धीरे धीरे वो होता नहीं है विसल ऐसे निकलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर आप लोगों को बड़े दिनों से हम कह रहे हैं कि भाई बैकग्राउंड में अगर नॉइज आए तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज रेनोवेशन गोइंग ऑन इन द बिल्डिंग एंड यू नो अराउंड द स्टूडियो, ऑल्दो वी ट्राई आवर बेस्ट कि ऐसा कुछ नहीं शोर आए, लेकिन अभी भी शायद आ रहा होगा आपको पीछे से। नाउ द थिंग इज दैट पीपल जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड, एंड यहाँ के जो ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सब अब मेरे को जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अब जब भी मैं फ़ोन करती हूँ उन्हें कि भाई शोर आ रहा है और हमारा शो चल रहा है, तो जवाब आता है कुछ नहीं, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता, ठीक है। लेकिन मैं जब मैसेज लिखती हूँ और मैं कहती हूँ कैन यू प्लीज लेट अस वर्क, तो फिर ऐसे आवाज आता है वी हैव सेंट अ रिमाइंडर एंड इट विल नॉट हैपन अगेन। तो तुम फोन उठाते क्यों नहीं हो मेरा, क्यों नहीं उठाते तुम मेरा फोन, पूछो जरा।
1: क्योंकि पता है ना उनको, यहाँ से फोन उठाने पे ऐसे जो झाड़ पड़ने वाली हो ना उनको, मतलब दे आर नॉट, दे नो इट।
0: ऐसे घुमा के लगाने का मन करता है ना, कभी कभी सुनते नहीं है। रेडियो मस्ती 24/7 पर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी फिलहाल जरा पीछे ठक ठक हो रहा है, अगली खबर बताती हूँ, आके बताती हूँ।
2: रेडियो मस्ती 24/7, डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: Hey, you got what I want, Sony. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट। 3, 2, 1।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: आइए आइए जी हाँ, तो प्यार होता कई बार है, तू झूठी मैं मकार, उफ क्या गाना है और क्या मतलब मूवी का नाम है, मजा ही आ गया।
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिक
0: खबरों के लिए। यहाँ पर अंतरा जी, आप क्या कर रही हैं, किस थॉट्स में आप?
1: इतनी घटिया मूवी थी ये, इतनी ज्यादा मैं इतनी स्टार्ड हो रखी हूँ इस मूवी से। मैं इसको हॉल में देखने गई थी अपनी मम्मी के साथ।
0: हाँ।
1: मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो बर्बाद किया है ना इस मूवी ने, फिर उसके बाद मुझे लगा कि देखो शक्ल मत दिखाना अपनी ऐसी मूवी के साथ।
0: अब तो मुझे सच में लगता है सिर्फ द से अगर नाम शुरू हो ना फिल्म का, धुरंधर हो या दृश्यम हो, उसके अलावा कोई मत देखो जाके हॉल में। एनीवे, कमिंग टू दिस न्यूज, द से दिल्ली, और दिल्ली में एक आदमी, उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी से मिलवाया हाल ही में, बोला कि देखो ये जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वाइफ को बोला, और ये तुम्हारा काम जो है ना घर का वर्कलोड में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, तो इसको घर में रख लेते हैं। हाँ, एंड देन द वाइफ सरप्राइजिंगली शी एग्रीड, एंड देन एवरीथिंग वेंट ऑन सोशल मीडिया। जी, तो किसी ने ये कहा कि ये तो मॉडर्न सोल्यूशन है, मतलब फ्रेंकली बड़ा अनकन्वेंशनल है, लेकिन आप देखो ना घर का काम भी बढ़ जाएगा, और उसके अलावा आप ये देखिए कि आराम से प्यार से रह लेंगे, पैसे वैसे भी नहीं देने पड़ेंगे काम करने के। तुझे क्या लगता है अंतरा?
1: वाह, क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन है ब्रो, लाइक सीरियसली। और आई एम थिंकिंग कि भाई सच्ची में सोसाइटी जो है काफी ओपन माइंडेड होती हुई जा रही है। अच्छी बात है भाई, जब तक सारे ऑल इन्वॉल्व्ड पार्टीज आर हैप्पी, है ना, क्या कहते हो रेणुका?
0: बिल्कुल। लेकिन एक छोटा सा, हम तो भाई देखो ना, वो चार आदमी हैं, चार लोग हैं, वो चार लोग कुछ तो बोलेंगे ही, तो एक छोटी सी बात बोली कि देख भाई शादी एक ट्रांजैक्शनल सर्विस नहीं है जैसा वो हस्बैंड ट्रीट कर रहा है, वो बाहर से गर्लफ्रेंड लाता है काम करने के लिए, जेंडर देखो जरा, हाँ कि लड़की ही काम कर सकती है घर का, खुद क्यों नहीं हेल्प कर लेता, खुद क्यों नहीं हेल्प करता घर का, घर तो उसका भी है ना भाई, तू किसकी साइड है?
1: मैं तो आई एम फॉरएवर बंदी की साइड हूँ, मैं तो
0: परफेक्ट।
1: मैं तो कभी भी उस तरफ कभी भी
0: like, कौन सी बंदी, गर्लफ्रेंड की साइड?
1: ना बीवी की साइड। तू डिसाइड कर तेरे को क्या करना है, दोनों से काम करवा,
0: बस
1: दोनों से करा।
0: अरे दोनों को बैठना चाहिए, उससे कराना चाहिए काम मेरे हिसाब से।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: अगले घंटे में यानी कि दूसरे घंटे में एंट्री करते हुए घुसते हुए ये है मस्ती मैडनेस।
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है
2: गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए बिल्कुल सही जगह पर आप पहुंचे हैं। फ्राइडे का मॉर्निंग है और फ्राइडे की मॉर्निंग में मतलब और क्या चाहिए, जस्ट नीड समथिंग टू गेट इनटू द वीकेंड इन अ फन वे राइट
0: गाइस। जितने भी लाइक कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स इफ यू आर वन ऑफ देम आई हैव दिस वन मतलब क्या मिल रहा है आपको अपने घर। देर आर लॉट ऑफ पीपल रेणुका आपने भी देखा होगा कि दीज गाइज दे गिव देम गिव यू अ टूर ऑफ द हाउस एंड दिखाते हैं आज मैंने ये कर लिया एंड ये वो कर लिया। बट इन टूडेज टाइम सिर्फ नॉर्मल लोग जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, चोर उचक्के वो भी देख रहे हैं कि तुम्हारे घर में तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो और मतलब पूरा यू आर काइंड ऑफ गिविंग इट अवे
2: एग्जैक्टली
0: एंड दैट टू ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो भाई ये जो हमारी यूट्यूबर है इनका नाम है रचना गुर्जर, ठीक है, शिवपुरी से है ये। अब क्या हुआ कि इनका कंटेंट क्या है कि ये साड़ी पहनकर बैठती हैं और कोई इधर से वीडियो ले रहा है एंड इन्होंने डिस्प्ले कर रखे टेबल पे अपने सारे सोने के गहने एंड देन शी टॉक्स अबाउट इट कि ये मैंने यहाँ पे लिया ये मैंने वहां पे लिया एंड ऑल दीज सोना का गहना इज लाइक आउट देयर। सो भाई ऐसा हो गया अपना गोल्ड कलेक्शन ऑनलाइन करते हुए अपने होम लेआउट के साथ इन्होंने किया, तो भाई जिसका डर था वही हुआ, जो थी जो चोर है उन्होंने इनका फुल ऑन स्ट्रेटजी के साथ घर में डाका डाला, कैश तो कैश गोल्ड तो गोल्ड, साथ में जो इनके फ्रिज में एनर्जी ड्रिंक्स दिखे थे इनको
2: वो भी लेके शाबाश, मतलब हेल्दी वाले चोर थे ये बात तो पक्की है। सो वही हम कहते हैं कि सोशल मीडिया हैज बिकम लाइक यू नो द गेटवे द डोर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें दूसरे आदमी के इंटरेस्ट, तुम्हें दूसरे आदमी के आना जाना, रिश्तेदार, भाई बहन, हर चीज पता लग जाती है और फिर तुम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो कि बच्चा हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, यू नो, एंड वी कैन टेल यू योर फ्यूचर। और फ्यूचर क्या होता है कि हम उसी बात का फायदा उठाएंगे। बट सीरियसली इसीलिए AI से भी मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि जो बची कुछ ही चीज़ है वो हम AI को बता देते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं। हो गया सब बराबर।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text.